हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

93.2 MHz पर ए है तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

92.2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने का।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज।

0: सफर कैसे रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, पर फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बी ए एम ए की डिग्रिया है सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: करो।
1: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
2: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
1: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
3: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
4: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
5: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
6: और मैं हूँ विकास।
5: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
6: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
5: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
4: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
8: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
9: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
8: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
9: एक्सक्यूज मी सर।
8: क्या हुआ?
9: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
8: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
9: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
8: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
9: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
8: श्योर
9: श्योर सर।
10: चलो बेबी चाय।
11: थैंक यू।
10: आपने आज की न्यूज सुनी?
11: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
10: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
12: ओह नो।
11: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
10: और क्या।
13: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

नमस्कार श्रोताओ, पहुंच चुके हैं हम रेडियो गुंजन धर्मशाला में लेकर ढेर सारी जानकारियां और प्यारे प्यारे गीत भी आपको सुनवाएंगे। उससे पहले थोड़ी सी अपना परिचय देना तो बनता ही है। और श्रोताओ, वैसे तो हमें पता है कि आप हमें हमारी आवाज़ के माध्यम से पहचान लेते हैं कि आज कौन सा दोस्त हमारे साथ बातचीत कर रहा है या कौन सा दोस्त आज कार्यक्रम में है। तो श्रोताओ, पहचान तो आप चुके हैं, लेकिन नए नए दोस्त हर दिन हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा परिचय देना तो श्रोताओ बनता ही है। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, जो भी है कहते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो हम भी अपने प्यारे से दोस्तों को प्यारी सी सुप्रभात और गुड मॉर्निंग कह देते हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हम पहुंच चुके हैं आपके घर आंगन में अपनी आवाज़ के माध्यम से। जल्दी से अपने रेडियो सेट ऑन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, और क्योंकि हम बहुत सारी बातें और जानकारियाँ अपने पिटारे में लेकर आए हैं, उस पिटारे को खोलने भी वाले हैं। क्योंकि भाई, जब तक हम अपनी बातचीत अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करते हैं, हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक हमारी दोस्ती है, एक प्यारा सा बंधन है हमारा और आपका कि हम चले आते हैं हर दिन आपसे मिलने और ढेर सारी बातें करने के लिए, ढेर सारी जानकारियां साझा करने के लिए। पूरे 2 घंटे का सफ़र श्रोताओं आपके साथ रहेगा। इस 2 घंटे के सफ़र में हम करेंगे ढेर सारी जानकारियां साझा और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूँ आपकी दोस्त सुमन, लेकर हाजिर हुई हूँ इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुविचार की। कहते हैं सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएँ हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। जी हाँ श्रोताओ, ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी टेंशन परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब समस्याएं आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे कैसे निपटारा किया जाए, मुझे तो अब समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, कैसे इस समस्या से निपटा जाए। लेकिन जब हम उस समस्या से निपट लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो समस्या एक हमें सीख दे जाती है। उस समस्या से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं और उस समय वो समस्या हमें बहुत आसान लगती है। जी हाँ श्रोताओं, इसी तरह से आपके साथ भी होता है ना जी, जब हम किसी भी काम को सीख लेते हैं तो वो हमें आसान लगना लग पड़ता है। और कुछ भी हम सीख कर नहीं आते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। उन्हें सीख कर हम एक ज़िम्मेदार नागरिक भी बन जाते हैं और ज़िम्मेदार इंसान बन जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती हैं। जब तक सांस है तब तक हम ज़िम्मेदारियों को निभाते ही रहते हैं। तो इन ज़िम्मेदारियों के साथ साथ श्रोतो, हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है, वो है आप तक गीत संगीत पहुँचाने की। तो आइए बिल्कुल देरी ना करते हुए लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

उम्मीदवारों की जीत को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री की जनहितैषी नीतियों की जीत। प्रदेश में आए शहरी निकायों के नतीजों के बाद भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत

0: सम्मानित। और धर्मशाला में हुए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के शहरी निकायों में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद देर शाम तक नतीजे घोषित कर दिए गए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए थे। देर शाम तक आए नतीजों के अनुसार भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने अधिकतर जगहों पर बाजी मारी। कुल्लू जिला के मनाली नगर परिषद में सभी 7 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की, जबकि कुल्लू नगर परिषद की 11 सीटों में 3-3 पर भाजपा व कांग्रेस, जबकि 5 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। भुंतर नगर परिषद के 7 वार्डों में 3 पर भाजपा समर्थित, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और बंजार में 5 पर कांग्रेस समर्थित, जबकि 2 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 2 नगर निगम धर्मशाला व पालमपुर के अलावा 5 नगर परिषद व 1 नगर पंचायत के लिए वोट डाले गए। हमारे संवाददाता के अनुसार अधिकतर जगहों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इस बीच जिला कांगड़ा में नगर परिषद व नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बधाई दी है। उन्होंने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जनहितैषी नीतियों की जीत बताया है। इधर दूसरी ओर ऊना जिले के नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 6 में से 4 निकायों पर अपना कब्जा जमाया है। वहीं चंबा नगर परिषद में आए परिणामों के अनुसार कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कुल 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि यहां पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार 5 सीटों पर सफलता हासिल कर सके। सिरमौर जिले के नाहन नगर परिषद ने एक बार फिर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। नगर परिषद के 13 वार्डों में से 7 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार ने विजय हासिल की। जीत के बाद भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में विजय जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत सीधे तौर पर दर्शाती है कि प्रदेश में चल रही कांग्रेस समर्थित सरकार से लोग तंग आ चुके हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की विजय ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है, जिसने 3.5 साल में हिमाचल के जनमानस का जीना दूभर कर दिया है। और हम एक बार फिर इस बात को वायदे से कहते हैं, आने वाले साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी। नाहन, सिरमौर और हिमाचल में विकास का एक नया दौर शुरू होगा।
0: शिमला जिला के रामपुर में 9 वार्डों वाली नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर पहली बार जीत दर्ज कर परिषद में अपना परचम लहराया है। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 3 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहा। बिलासपुर नगर परिषद के 11 वार्डों में भाजपा ने 9 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। घुमारवी नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने ही सेंध मारी। यहां पर कुल 9 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 9 जबकि 7 जबकि 2 पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की। इसी तरह शाहतलाई में भाजपा समर्थित उम्मीदवार 5 जबकि 2 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। श्री नैना देवी जी नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सेंध मारी। मंडी जिले के सरकाघाट नगर परिषद के 3-3 वार्डों में भाजपा व कांग्रेस, जबकि 1 अन्य वार्ड पर आजाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। सुंदरनगर नगर परिषद के 13 वार्डों में से 9 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जबकि 2 पर कांग्रेस समर्थित और 2 पर आजाद उम्मीदवार विजेता रहे। नेरचौक नगर परिषद में कांग्रेस ने 8 वार्डों पर जीत हासिल की है, जबकि यहां पर भाजपा समर्थित 1 उम्मीदवार विजयी रहा। इसी तरह जोगिंदरनगर परिषद में 3 वार्डों में भाजपा समर्थित जबकि 2 पर आजाद उम्मीदवार जबकि 1 सीट पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहा। सोलन जिला के परवाणु नालागढ़ नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने परचम लहराया है। जिले की अर्की व कंडाघाट नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सेंध मारी है। इस बीच

0: नगर निगम चुनाव के नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कला को सहेजने के लिए निरंतर कार्य कर रहे केलंग निवासी युवा सामाजिक उद्यमी तंजिन बौद्ध को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तंजिन बौद्ध और उनकी टीम लंबे समय से लाहौल की विलुप्त होती सांस्कृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों में जुटी हुई है। उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से एक 80 साल पुराने पारंपरिक घर को संरक्षित कर धरोहर केंद्र के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नाहन विधानसभा क्षेत्र का कोलर गांव आदर्श और सौर गांव के लिए चयनित किया गया है। योजना के तहत सिरमौर जिला के 27 गांव का चयन किया गया था, जिसमें सोलर पैनल लगाने की विभाग की योजना थी। एक रिपोर्ट।
1: सिरमौर जिला में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अनुदान पर लोगों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत कोलर के गांव कोलर को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर गांव चयनित किया गया है। योजना के मुताबिक 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव को सोलर प्लांट लगाने की सूची में शामिल किया जाना था, मगर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सिरमौर में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 27 गाँव चयनित किए गए थे, जिसमें कोलर गांव ने सबसे अधिक पैनल लगाकर पहला स्थान हासिल। योजना के तहत अब सोलर पावर प्लांट संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि कोलर गांव को मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: धर्मशाला में कल खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 8 विकेट पर 198 रन ही बना सकी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने शहरी निकायों के चुनाव के नतीजे से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, हिमाचल के 47 शहरी निकायों में से 21 पर भाजपा, 19 पर कांग्रेस समर्थित काबिज, 7 में अन्य के हाथ चाबी। पंजाब केसरी ने लिखा है, हिमाचल में 51 शहरी निकाय चुनाव में 69.16% रहा मतदान। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण शीर्षक दिया है, कल से 23 तक अंधड़, वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी। सीबीएसई में अब पुनर्मूल्यांकन सस्ता, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, बोर्ड ने 12वीं की आंसर शीट देखने की फीस में भी की कटौती। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 47 शहरी निकायों के चुनाव नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी। 4 नगर निगम चुनाव के परिणाम 31 मई को होंगे घोषित। शहरी निकायों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री की जनहितैषी नीतियों की जीत। प्रदेश में आए शहरी निकायों के नतीजों के बाद भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ जीत करेगी दर्ज। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर व पारंपरिक कला को सहेजने के लिए केलंग निवासी तंजिन बौद्ध अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित। और धर्मशाला में हुए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ के लिए किया क्वालिफाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। आपका वोट, आपका शहर, आपका भविष्य।
1: क्या आप जानते हैं कि धर्मशाला के विकास में आपकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना कानूनन अनिवार्य है? नगर निगम के नियमों के अनुसार
0: वर्ष में 2 बार वार्ड सभा आयोजित करना अनिवार्य है। ये एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच है जहां आप अपने वार्ड की समस्याओं और मुद्दों को सीधा उठा सकते हैं।
1: आपके सुझावों को ही वार्ड विकास योजना और नगर निगम विकास योजना का आधार बनाया जाता है।
0: वार्ड सभा का आयोजन ना करना नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से बाहर रखने के समान है।
1: जब आप वार्ड सभा में आते हैं तो आप केवल शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान का हिस्सा बनते हैं।
0: भागीदारी आपकी, विकास हमारा उद्देश्य। अपनी समस्याओं को योजना का हिस्सा बनवाएं, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करें।
2: आइए मिलकर बनाएं एक बेहतर और विकसित धर्मशाला।
1: जागरूक बने और अपने हक के लिए आगे आए।
3: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बात करते हैं आज के दिन की। आज है 18 मई और दिन है सोमवार का। शिव भगवान को समर्पित ये दिन होता है और हम में से बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने आज के दिन व्रत भी रखे होंगे। शिव भगवान के व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं और भगवान उनकी मनोकामनाओं को भी पूरी करते हैं। तो जैसे 18 मई की श्रोताओं हम बात कर रहे हैं, तो 18 मई को बहुत सारी जो है घटनाएँ भी घटी होती हैं और हर दिन कुछ ना कुछ जानकारियों से भी भरा होता है। तो आज की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो 1974 में 18 मई का दिन एक ऐसी अहम घटना के साथ इतिहास में दर्ज है जिसमें भारत को दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। भारत ने आज के दिन राजस्थान को पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण परीक्षण किया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। ये पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी भी देश के परमाणु परीक्षण करने का साहस किया था। इस परीक्षण की प्रस्तावना वर्ष 1972 में लिखी गई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का दौरा किया था और वहाँ के वैज्ञानिकों से बातों ही बातों में उन्हें परमाणु परीक्षण के लिए संयंत्र बनाने की इजाज़त दे डाली थी। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारी। अपनी जानकारियों के साथ साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में लेते हैं विराम और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम 18 मई की बात कर रहे थे, यानी आज के दिन की बात कर रहे थे, दुनिया भर के संग्रहालयों की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए 18 मई 1970 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया था। इसके बाद से हर साल दुनिया भर में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा श्रोताओं, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में HIV वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाना और लोगों को सुरक्षित रखना है। जी हाँ, ढेर सारी जानकारियाँ आज के कार्यक्रम में हैं, तो उनमें हम बात करें 18 मई 1912 को भारत की पहली फीचर लेंथ इंडियन फिल्म श्री पुंडलिक करोनेशन सिनेमा फोटोग्राफर गिरगांव मुंबई में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक दादा साहेब तोड़ ने उर्फ रामचंद्र गोपाल ने किया था। बहुत सारी जानकारियाँ श्रोताओं आज के कार्यक्रम में हैं। फिलहाल थोड़ा सा अपनी बातों को देते हैं विराम और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम बात कर रहे थे पोखरण में ही क्यों किया गया था पहला परमाणु परीक्षण। इस मिशन को अंजाम देने के लिए वैज्ञानिकों ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण को चुना। इसके पीछे कई बड़े महत्वपूर्ण भौगोलिक कारण थे। पोखरण का इलाका मानव आबादी से कोसों दूर एक सुनसान रेगिस्तान है, जहां की जमीन के नीचे सूखी रेत और पत्थरों की मजबूत परतें मौजूद हैं। ये मजबूत बनावट परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन को बाहर आने से रोकता है। वैज्ञानिकों ने श्रोता एक ऐसी ही जगह की तलाश थी जहाँ कोई नुकसान ना हो। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थे, इस मिशन को हरी झंडी दिखाई और उनका मानना ये था कि देश की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना बेहद ज़रूरी है। इस परमाणु परीक्षण का मकसद पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, जिसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपोजर कहा गया था। भारत दुनिया को ये बताना चाहता था कि वहाँ इस तकनीकी का इस्तेमाल ऊर्जा और विकास के लिए करेगा। श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आज के दिन कुछ खास व्यक्तियों के जन्मदिन हैं। भारतीय अभिनेत्री रेखा का जन्म 18 मई 1970 को हुआ था, जिन्होंने रामजी राव स्पीकिंग पलायनलम में ए ओटो पुनागई मुन्नाई एम्ब बोमुकटी और तमिल में कंदलोरा कवितीरगल सहित हिट फिल्मों में अभिनय किया था। और उनके साथ साथ जो है और भी व्यक्तियों के जन्म आज के दिन हुए हैं, उनकी भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में फिर से रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC A+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। आपका वोट, आपका शहर, आपका भविष्य।
1: क्या आप जानते हैं कि धर्मशाला के विकास में आपकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना कानूनन अनिवार्य है? नगर निगम के नियमों के अनुसार
0: वर्ष में 2 बार वार्ड सभा आयोजित करना अनिवार्य है। ये एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच है जहां आप अपने वार्ड की समस्याओं और मुद्दों को सीधा उठा सकते हैं।
1: आपके सुझावों को ही वार्ड विकास योजना और नगर निगम विकास योजना का आधार बनाया जाता है।
0: वार्ड सभा का आयोजन ना करना नागरिकों को विकास की मुख्य धारा से बाहर रखने के समान है।
1: जब आप वार्ड सभा में आते हैं तो आप केवल शिकायत नहीं करते बल्कि समाधान का हिस्सा बनते हैं।
0: भागीदारी आपकी, विकास हमारा उद्देश्य। अपनी समस्याओं को योजना का हिस्सा बनवाएं, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करें।
2: आइए मिलकर बनाएं एक बेहतर और विकसित धर्मशाला।
1: जागरूक बने और अपने हक के लिए आगे आएं।
3: श्रोतो, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में। ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसे सबसे पहले 1983 में मनाया गया था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाए जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालय और पुरातन चीज़ों की महत्ता के प्रति जागरूक करना है। भारत में इस दिन कई संग्रहालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें लोगों को संग्रहालय के बारे में विस्तार से बताया जाता है। कोरोना महामारी के चलते भी बहुत सारे जो है संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें जो है रखी गई थी, तब उस समय में भी इस दिवस को मनाया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के इतिहास की थोड़ी सी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 18 मई 1983 में संग्रहालय की महत्ता को समझाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की बात की गई थी। और साथ ही इसके अलावा विभिन्न देशों के पुरातन संस्कृति और इतिहास को जीवित रखना भी है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है जो दुनिया भर के सभी देशों की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। अब थोड़ी सी बात श्रोता अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के महत्व की भी कर लेते हैं। ये दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि सभ्यता और संस्कृति हमारी धरोहर है। इसमें संग्रहालय संजोया जाता है। अगर संग्रहालय ना हो तो आज इतिहास विस्तृत हो जाता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति विलुप्त होने के कगार पर है। इन संग्रहालय में हमें ना केवल अपने इतिहास को जानने का मौका मिलता है बल्कि सभ्यता और संस्कृति की पहचान भी होती है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उद्देश्य की थोड़ी सी बात करें तो संग्रहालय हर देश की संस्कृति धरोहर को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय दिवस का उद्देश्य लोगों को इतिहास के बारे में शिक्षित करना, जागरूक करना है, और साथ ही साथ संग्रहालय के संरक्षण के कारण ही आज दुनिया भर में म्यूजियमों में सालों पुराने दस्तावेज और संस्कृति देखने को मिलती है। दुनिया भर में समृद्ध संस्कृति परंपरा का प्रचार और संरक्षण करने में भी संग्रहालय का विशेष योगदान रहा है। भारत में बहुत सारे संग्रहालय हैं और काफ़ी ख़ास हैं, क्योंकि भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय अमृत महोत्सव के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाता है। और श्रोताओं, फिलहाल थोड़ा सा कार्यक्रम में हम रुकते हैं और आप सब ही तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में। इसे भी हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य HIV एड्स के खिलाफ निवारक टीके की खोज की तत्काल आवश्यकता को उजागर करना और इस दिशा में काम कर रहे वैज्ञानिक, डॉक्टर तथा और लोगों के योगदान को समर्पित ये दिन है। इसके इतिहास की बात करें श्रोताओं, तो इस दिन की नींव 18 मई 1997 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा मैरीलैंड में दिए गए एक ऐतिहासिक भाषण के दौरान की गई थी। इसका पहला आयोजन उसके सहबान के बाद पहला विश्व टीकाकरण दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था। इसके लक्ष्य की बात करें तो क्लिंटन का मानना था कि HIV महामारी की पूरी तरह खत्म करने के लिए केवल इलाज काफ़ी नहीं है, बल्कि एक प्रभावी टीका ही सबसे शक्तिशाली हथियार साबित होता है। तो श्रोतो, अपनी जानकारियों को हम देते हैं यहीं पर विराम और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की, यानी एड्स के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे और जागरूकता की बात करें तो इस दिन आम जनता को याद दिलाना है कि भले ही एड्स के इलाज में काफ़ी प्रगति हुई है लेकिन एक सुरक्षित वैक्सीन का निर्माण अभी भी बाकी है। इन शोधकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है जो दर्शकों को HIV वैक्सीन विकसित करने में चुनौतीपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य संगठन इस दिन समुदाय के नेतृत्व प्रशिक्षण को बढ़ावा देने, HIV से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने पर भी जोर देता है। तो श्रोता, जागरूकता के बिना कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता है। जागरूकता बेहद ज़रूरी होती है। जब तक जागरूक नहीं हम होंगे तो किसी भी काम को हम भली प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की हम बात कर रहे थे, तो ये दिन सिर्फ एक हेल्थ डे नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ा है जो HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया भर में आज भी HIV संक्रमण एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दवाओं इलाज में सुधार हुआ है लेकिन अब तक पूरी तरह से असरदार वैक्सीन नहीं बन पाई है। यही वजह है कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस मौके पर वैज्ञानिक, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स के प्रयासों को सम्मान दिया जाता है और लोगों को HIV के प्रति जागरूक करने का काम किया जाता है। साल 2026 में भी ये दिन यही संदेश देता है कि जागरूकता, रिसर्च और मिलकर किए गए प्रयास ही HIV मुक्त भविष्य की उम्मीद बन सकते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर इस समय चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की हम बात कर रहे थे, और इस दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बड़ा भाषण दिया था। उन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स से HIV वैक्सीन बनाने के लिए तेज़ी से काम करने की अपील की थी। उनका मानना था कि एड्स जैसी बीमारी को रोकने के लिए सिर्फ इलाज नहीं बल्कि वैक्सीन सबसे ज़रूरी हथियार साबित हो सकता है। इस भाषण के बाद 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम का ये गीत आप तक पहुँचाते हैं।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और हम बात कर रहे हैं एड्स के बारे में। एचआईवी वायरस संक्रमित व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को पूरी तरह ख़राब कर देता है। इसके कारण व्यक्ति के लंग्स स्टम में बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इस उपचार के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी हद तक गंभीर बीमारी को मैनेज करने में सक्षम होती है। वर्षों से श्रोताओं, एचआईवी टीका विकसित करने के लिए गहन रिसर्च की गई है और एचआईवी वायरस अभूतपूर्व ढंग से जेनेटिकली खुद को बदल लेती है, जिसमें व्यक्ति को आजीवन संक्रमित करने की क्षमता होती है। एचआईवी वैक्सीन की खोज में कुछ बाधाएं हैं और वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वायरस के प्रति सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा को कैसे प्रेरित किया जा सके। एचआईवी वायरस लंग्स स्टम्स में भी व्यक्ति के प्रति स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और वर्ल्ड वैक्सीन डे अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी और इन्फेक्शियस डिजीज़ में 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाने की शुरुआत हुई थी। एड्स वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत को देखते हुए विश्व ज़्यादातर लोगों को एचआईवी मनाने के उद्देश्य पर जोर देता है। भारत में भी हर वर्ष एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस या एचआईवी वैक्सीन डे 18 मई को मनाया जाता है और टीके के महत्व और इस दिशा में लगे वैज्ञानिकों के कार्य की महत्ता से आम लोगों के अवगत कराने के लिए ही वर्ल्ड वैक्सीन डे मनाया जाता है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को हम थोड़ा सा देते हैं विराम और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

शोधा इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम में थोड़ी सी वैक्सीन की बात और कर लेते हैं। HIV वैक्सीन के माध्यम से यह बताया जाता है कि HIV को रोकने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका बहुत ज़रूरी है। ये HIV वैक्सीन अनुसंधान के महत्व के बारे में इम्यूनिटी को शिक्षित करने का भी दिन है। इस वर्ष इसकी थीम है HIV को लेकर समाज के में असमानता समाप्त करना और एड्स का उन्मूलन करना। साथ ही साथ श्रोता संक्रमण का अंतिम चरण है। HIV इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। इससे व्यक्ति भिन्न भिन्न तरह के संक्रमण और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। लंबे समय में एड्स का व्यक्ति के शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये बुरे प्रभाव व्यक्ति और उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले विशिष्ट संक्रमण या जटिलताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। तो श्रोताओं अपनी जानकारियों को देते हैं विराम और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीता।

तो आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ ढेर सारी बातें की हैं, जानकारियां साझी की हैं। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं, तो चलते चलते अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701-8170-1811-970-91। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया।
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए है।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से ही बीमार न पड़े, इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो पोषण।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है

0: कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं, अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
1: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
2: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
3: और मैं हूँ विकास।
2: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
3: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
2: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
1: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
4: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
6: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
5: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
6: एक्सक्यूज मी सर,
5: क्या हुआ?
6: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
5: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
6: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
5: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, और मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
6: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
5: श्योर
6: श्योर सर।
7: हेलो बेबी चाय।
8: थैंक यू।
7: आपने आज की न्यूज सुनी?
8: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
7: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
9: ओह नो।
8: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
7: और क्या।
10: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।
1: देखता रहूं
2: जोकर।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गहर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701-8170-181-17091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया बिरजू बेटा, बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
2: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
2: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
2: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
2: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
2: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए है, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
10: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके सामने कुछ ऐसे लोगों को लाते हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर जो ट्रांसप्लांट से किसी तरह से जुड़े हैं, जो अपने आप में एक हीरो हैं। उसी की तरह आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनका नाम है विमल शर्मा और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट 2019 में हुआ था। दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में एक खास बात बता दूं कि जिंदा दिली का नाम है विमल शर्मा। अब ये पेशेंट नहीं है, ये पेशेंट पहले थे आफ्टर ट्रांसप्लांट, जो अपने आप में एक विलिंग पावर इन्होंने दिखाई है और अपने आप को रिकवर किया है। उससे अब मैं तो इन्हें पेशेंट नहीं बोल सकता और वो खुद भी पेशेंट बोलना खुद को पसंद नहीं करते बुलवाना। विमल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में।
3: थैंक यू
2: विमल जी। जैसा कि मैंने बताया कि आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, तो मैं बस एक बार हमारे श्रोताओं का आप ये बताइए कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट है, इसकी नौबत कैसे आ गई? मतलब अगर आप पहले भी ऐसे ही थे तो ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, एकदम सडनली कैसे आई और देन कैसे यहाँ तक पहुँच गई?
3: बिल्कुल सौरभ जी, मैं विस्तार पूर्वक आपको बताता हूँ। एक तो मैं आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे को बड़ा महान बना दिया। ये आपने जो बात कही है वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं अपने आप को ग्रेट समझता हूँ। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि वाकई मैं जो जिया हूँ या जी रहा हूँ, जिंदा दिली से जी रहा हूँ। नंबर एक, ये मेरी जो प्रॉब्लम सौरभ जी हुई है, ये शुरू हुई 2018 से
2: जी।
3: तो ये मेरी बीमारी का नाम ILD बताया गया, क्योंकि मेरे को सांस की दिक्कत शुरू हुई तो मैंने अपनी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया, ठीक है ना। तो वहां से मुझे ये कहा गया कि ILD है, इससे क्या है कि आपके जो लंग्स हैं वो स्क्वीज हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जो अंदर के लंग्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे, इतने हार्ड हो जाएंगे कि पत्थर जैसे हो जाएंगे। अब आप साथियों, आप एक अंदाजा लगा लो, कहां रबड़ कहां पत्थर। तो पंपिंग जो है वो डेड हो जाएगी, इसलिए लगेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने बहुत कोशिश की, इधर गए उधर गए, उस हॉस्पिटल गए, हर जगह घूमे। मुझे ऑक्सीजन लग गई थी, ऑक्सीजन इसलिए लग गई थी कि मेरी खुद की ऑक्सीजन जो जनरेट हो रही थी वो पूरी नहीं हो रही।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि ऑक्सीजन का जो फेफड़ों का काम है वो हेड से लेके अंगूठे तक पैर के हर जगह उसने अपनी ऑक्सीजन देनी है। ओके,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ये मेरे साथ शुरू हुई थी।
2: बिल्कुल विमल जी, मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो ILD डिसीज का आपने नाम लिया, इसका फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। इसमें होता क्या है, जो आपकी लंग्स की स्पॉन्जीनेस है धीरे धीरे खत्म हो जाती है और फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स टिश्यूज में। देखिए, जो आपकी सांस लेने की क्षमता है जिसमें लंग्स फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, वो क्षमता बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण आप कम ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो धीरे धीरे कम ऑक्सीजन के कारण आपके जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसमें आपको थकान महसूस होने लगती है, आप सांस की कमी महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे आप चल भी नहीं पाते। तो इतनी भयावह बीमारी है ये। विमल जी, आपने बताया कि 2018 में शुरू हुई थी, उसके बाद
3: घूम घाम के 3-4 हॉस्पिटल गए, तो सब ने मेडिसिन पे मेरे को रखा। हमने बड़ा पूछा कि इसकी रेमेडी क्या है, बोला जी आपको ऑक्सीजन पे जिंदा रहना पड़ेगा और साथ के साथ मेडिसिन खानी पड़ेगी। और हम आपस में बैठे थे घर वाले कि यार, अगर ऑक्सीजन पे जिंदा रहना है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो जिंदगी भर डिपेंड हो गया। हार के एक आशा की किरण दिखी मुझे, जो कि मेरी बेटी के द्वारा बताई गई, बिकॉज मेरी बेटी है एक अमेरिकन कंपनी के अंदर, उसका नाम है बोस्टन साइंटिफिक।
2: जी,
3: मेरी बेटी ने बोस्टन साइंटिफिक पे बात की, बिकॉज वो एक अमेरिकन कंपनी है, वो ह्यूमन बॉडी के सारे डिवाइसेज बनाती है।
2: जी, पेसमेकर वगैरह
3: जो भी डिवाइसेज लगने हैं, कुछ भी लगना है, तो वो अमेरिकन कंपनी है, गुड़गामा में वो बनाती है। तो वहाँ बड़े प्रोफेशनल हाई लेवल के डॉक्टर्स बैठे होते हैं, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि विमल जी को जो नोएडा के अंदर मेट्रो हॉस्पिटल है, वहाँ के द बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट इन इंडिया डॉक्टर दीपक तलवार है, आप उनसे मिलिए। तो हम उनके पास गए अपॉइंटमेंट लेके। फर्दर आप कुछ पूछना चाहती हैं, मैं फिर आगे
2: जी। तो विमल जी, आप ये बताइए, जब आपने डॉक्टर दीपक तलवार से कंसल्ट किया, तो उन्होंने आपको फिर क्या सलाह दी?
3: ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम और मेरी फैमिली हम गए, उन्होंने मेरे को एक टेस्ट पे रखा, एक ट्रेडमिल पे रखा, एक साइकिलिंग पे रखा, फिर उन्होंने मेरे को वॉक कराया। तो जब उन्होंने साइकिलिंग पे रखा, ट्रेडमिल पे रखा, वॉक कराई, तो उन्होंने एक मशीन सी मेरे चेस्ट पे लगा दी थी, उसके अंदर मैं अनफिट डिक्लेयर हुआ था। हमारे को दीपक तलवार जी ने चैम्बर में बुलाया हमारी फैमिली के साथ कि भाई इनका लास्ट जो अल्टरनेट है, आप इनको चेन्नई ले जाइए, लंग्स ट्रांसप्लांट कराइए। अगर आप लंग्स ट्रांसप्लांट कराएंगे, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वहां जाके लंग्स ट्रांसप्लांट करें, तो इनकी लाइफ बड़ी अच्छी चलेगी, स्मूथ चलेगी, इंडिपेंडेंट चले
2: जी।
3: ये बात हमारी उन्होंने बता दी। अदरवाइज इनकी लाइफ ज्यादा नहीं है, वो टोटली ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड है। और जो मेडिसिन है साथियों, मैं आपको बता दूं, हर आदमी के बस की नहीं है वो मेडिसिन खानी। मुझे इतनी कॉस्टली मेडिसिन खानी पड़ी सिर्फ अपने 4-5 महीने या 7-8 महीने के सर्वाइवल के लिए, बस उसके बाद मेरा सर्वाइवल नहीं था
2: जी। आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जब 2018 में तो दिल्ली में भी ट्रांसप्लांट्स होते थे, लंग ट्रांसप्लांट, दिल्ली में भी डॉक्टर थे, तो फिर आपको चेन्नई जाने की सलाह क्यों दी गई?
3: सर ऐसा है, एक चीज बता दूं, मेरे ऑफिस के एक कुलीग हैं, उनका भी लंग ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो अभी रिटायर्ड हुए हैं मेरे दफ्तर के, तो उन्होंने मेरे बताया विमल जी आप चेन्नई जाइए, बेस्ट हॉस्पिटल है अपोलो, ठीक है। मैंने ट्रीटमेंट कराया, आज उनके लंग्स ट्रांसप्लांट को हुए 5 साल हो गए हैं। तो मैंने पूछा आपका लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपको कैसे मिला? कहते हैं मेरे अंदर लेडीज का लंग्स ट्रांसप्लांट, मेरे लंग्स जो है लेडीज के लगे हैं। मैं हैरान हो गया, मैं यार ये, कहते नहीं, ह्यूमन बॉडी के जो अंग हैं, चाहे लेडीज जेंट्स में लग जाते हैं, जेंट्स लेडीज में लग जाते हैं, हार्ट लेडीज में लग जाता है, लेडीज का हार्ट जेंट्स में लग जाता है। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप विमल जी जाओ तो अपोलो जाओ, टेक केयर, दे लुक आफ्टर बिफोर ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेशन, जिंदगी भर आपकी वो चिंता करेंगे, बिकॉज उन्होंने अपना ये जो आपका ट्रांसप्लांट किया है, उनको ये चिंता रहती है कि हमारा पेशेंट लंबी जिंदगी जिए, ठीक है। उसके बाद सौरभ जी हम सीधा चेन्नई गए, ट्रस्ट के ऊपर था, चेन्नई गए तो हमने दिल्ली से ही बात कर ली थी, तो वहां के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पाल, डॉक्टर सुंदर, डॉक्टर मदान, डॉक्टर सेल्वी, तो वो देवर वेटिंग, तो वहां हम लैंड हुए एयरपोर्ट पे, उनकी एम्बुलेंस आई हुई थी हमारे पास, बिल्कुल एस्कॉर्ट करके हमारे को हॉस्पिटल ले गए, वहां मेरा इवैल्यूएशन हुआ बॉडी का। सौरभ जी एक और बात मैं बता दूं, मेरा 70 किलो वेट था, इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी थी, मतलब मेरे को अपने आप को भी देख के ऐसा लगता था कि यार मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे तो बॉम्बे जाना चाहिए हीरो बनने के लिए। मेरा वेट 42-43 किलो रह गया, स्केल्टन हो गया मैं, बिल्कुल कहती है ना, जैसे रात को अगर आप, मैं एक थोड़ा सा दूसरे वे में भी लेके जा रहा हूँ, बिकॉज मैं बड़ा मस्त किस्म का आदमी हूँ, जैसे रात को आप सेलिब्रेशन करती हो बर्थडे की, तो गुब्बारे फूले होते हैं
2: जी,
3: तो सुबह देखते हो तो गुब्बारे फूस होते हैं, तो रिंकल आई होती है, तो मेरा हाल ये था।
2: बिल्कुल बिल्कुल विमल जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी जिंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का। इस जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा, एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: साथियों इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से आप सामने हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं विमल जी से। विमल जी अपने ट्रांसप्लांट की जर्नी की स्टोरी बता रहे हैं। तो विमल जी आप हमें ये बताइए कि जब आप चेन्नई चले गए तो चेन्नई में आपने जब हॉस्पिटल में दिखाया उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करना पड़ा होगा, तो करीब कितने दिन तक या कितने महीने तक आपको अपने लंग्स मिलने तक का वेट करना पड़ा?

0: लंग्स की वजह से मेरा हार्ट की आर्टरी भी डैमेज है
1: जी।
0: तो हमारे यही को डॉक्टरों ने बुलाया कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, हमारे को काउंसलिंग की कि भैया ऐसा है विमल जी, आप सबको हम बता दें, अगर आपका हम लंग्स ट्रांसप्लांट करेंगे किसी यंग आदमी का और वो हार्ट आपका वो झेल नहीं पाएगा, हार्ट की आर्टरीज आपकी जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, तो हम चाहेंगे आप हार्ट और लंग्स इकट्ठे लगवाएं।
1: मतलब आप लंग ट्रांसप्लांट करवाने गए थे लेकिन एडिशनली आपको हार्ट ट्रांसप्लांट भी करवाने की सजेशन डॉक्टर्स के द्वारा दी गई।
0: हाँ, तो वो उन्होंने जो हमारे को दी तो हमने हंसते हंसते ये कहा, डॉक्टर साहब आप हमारे लिए गॉड हो, आप बेस्ट हो, जो आप करोगे आप साइन करवाओ, आप अपना काम करो
1: जी।
0: तो आप ये देखो इतनी बड़ा डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना, ऑन द स्पॉट, ये भी एक उसको कहते हैं ना जिंदा दिली है, दिलेरी है
1: जी।
0: और मेरे में क्या कॉन्फिडेंस था, जब कॉन्फिडेंस था यार मैं तो ठीक होने के लिए आया हूं तो मैं ठीक हो गया। मेरा वहां शर्मा जी सबसे बड़ा क्या था कि वहां फिर हमारा नाम रजिस्टर्ड हुआ, वो रजिस्टर्ड वही करवाते हैं हॉस्पिटल वाले जो उनकी एक एनजीओ की गवर्नमेंट है, वहां नॉमिने उनका आप सबका जो भी ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अंदर टोटल इवेल्युएशन किया हुआ आपकी बॉडी का वहां रजिस्टर्ड होता है, जिसमें आपकी चेस्ट का साइज क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी हाइट क्या है, जो भी पैरामीटर है, तो उसके बाद आपकी पैरामीटर के अनुसार अगर अंग आपको मिलते हैं तो आपका अगर 100 नंबर है तो पहला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर पहला है तो हो सकता है 100 नंबर पे आ जाए।
1: तो करीब कितने कितने महीने आपको वेट करना पड़ा लंग्स के लिए?
0: 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि भाई आपका वो बी रेडी आफ्टर 3 मंथ कि हमारे को किसी डोनर के मिले हैं, बट आफ्टर उनका थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर फोन आ गया कि नहीं आप अपना खाना खाइए पानी पीजिए, जो डोनर आया था उसके डोनर जो इन्फेक्टेड थे इसलिए हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते।
1: तो अच्छा, तो फिर आपको टोटल वेट कितना पड़ा करना पड़ा?
0: 10 महीने।
1: 10 महीने के बाद आपको अपने लंग्स मिले?
0: 9-1 महीने के बाद मुझे डोनर मिला, बिल्कुल परफेक्ट।
1: 9 महीने तक फिर आप चेन्नई में ही रहे या वापस दिल्ली आ गए?
0: सर जी क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कोई भी ट्रांसप्लांट वाला अगर बाहर है तो वो घर नहीं आ सकता, बिकॉज अगर डोनर ने बाय चांस अपने अंग दान किए तो विद इन एन आवर,
1: बिल्कुल
0: 1-2 घंटे के अंदर अंदर हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट हो जाना ही चाहिए।
1: विमल जी मैं यहाँ पर श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि जैसा विमल जी ने कहा कि हम अंगों को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, हम अंगों को किसी फ्रिज में या किसी मशीन में जिंदा नहीं रख सकते, जैसे बॉडी में से ऑर्गन्स निकालेंगे तो कुछ घंटों के अंदर अंदर उनको ट्रांसप्लांट करना जरूरी हो जाता है वरना वो खराब हो जाते हैं जी। तो विमल जी ऐसे समय में जब आपको 9 महीने अपनी सिटी से बहुत दूर दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ा विथ मेडिकल कंडीशन, जब आप खुद ठीक नहीं है तो आपको कई समस्याओं का सामना पड़ा होगा, कुछ एक समस्या है जो आप श्रोताओं को बताना चाहते हो या जो जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनके साथ उनका सॉल्यूशन शेयर करना चाहते हो कि हाँ ये समस्या हमें आई थी, तो आप अगर कभी जाना हो तो आप, आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप ये व्यवस्था लेके चले, आप अगर उन्हें कुछ बताना चाहते हो।
0: बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, और वैसे भी सौरभ जी मैं आपको बता दूं मैं यूट्यूब के ऊपर हूं, मेरे 3 वहां अपने मैंने अपनी वीडियो डिलीवर की हुई है, एक मेरी अपोलो की तरफ से भी है, मेरे पास बहुत फोन आते हैं थ्रू आउट इंडिया एंड अब्रॉड, जब वो मेरे से बात करते हैं ना तो आधी से ज्यादा टेंशन तो मैं उनकी दूर कर देता हूं, मैं कभी भी उनसे ना ऑडियो पे बात नहीं करता, वीडियो पे बात करता हूं, वीडियो पे देखता हूं कि वो मेरा चेहरा देखें
1: जी
0: मैं कैसा दिखता हूं और क्या कैसे बात करता हूं, तो ये समस्या तो आधी मैं वैसे ही दूर कर देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ जी, हम गए हमने वहां मकान लिया, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बड़ी है ये तो आप कहते ही हो, फिर भी हमने किसी तरह मैनेज कर लिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी समझ गए, वहां फिर आप किसी दूसरी जगह रह रहे हो, हर चीज की समस्या आती है, लेकिन अगर आप समस्या को समस्या ना लो, अगर आप समस्या को समस्या लोगे तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते, आपको कोई समस्या कोई नहीं है, जो भी आएगी ये हम ठीक करेंगे, इसको पार करेंगे, पूरी करेंगे।
1: जैसे कुछ समस्याएं जैसे आपने बताया कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर पे थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, हाइजीनिक खाने की व्यवस्था, चीजों की, जैसे ब्लड।

0: ट्रांसफ्यूजन की कभी जरूरत पड़ गई या दवाइयों की, इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया आपने?
1: सौरभ जी, मैंने सिलेंडर भी रखा हुआ था, कंसंट्रेटर भी रखा हुआ था
0: जी।
1: तो उसमें ये था कि मैंने दोनों चीजें रखी हुई थी।
0: ये जो आप बता रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर, तो ये आपको खरीदना पड़ा था या फिर रेंटल मिलता है वहाँ पर?
1: नहीं, वो मेरे साथ मेरा बेटा था, मेरी वाइफ थी, सारा सर्च किया लोकल, वहाँ पर हमारे को कंसंट्रेटर आला मिला, उससे हमने कंसंट्रेटर लिया रेंट पे, सिलेंडर आला मिला, नियरेस्ट कौन सा है उससे हमने सिलेंडर लिया रेंट पे, तो जो भी रेंट हमने पे करना था वो हमने पे किया। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी चीज नहीं है कि कोई चीज अवेलेबल ना हो।
0: अगर हम रेंट की बात करें तो जैसे कॉन्सेंट्रेटर हुआ या ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, करीब करीब कितना पैसा देना पड़ता है इनके एक महीने के रेंट के लिए?
1: डेट डिपेंड्स सौरभ जी, सबसे बड़ी बात
0: थोड़ा सा हम आइडिया लेना चाहते हैं।
1: मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप कोठी लो या आप ऐसी जगह ले लो या आप ऐसी जगह ले लो, तो डेट डिपेंड्स। जैसे दिल्ली के अंदर है कि ये इसका रेंट 10,000 है, यही साउथ दिल्ली में चला जाएगा 50,000 हो गया, यही गोल्फ लिंक में चला जाएगा तो 1,00,000 हो गया, यू नो डेट एरिया। हाँ, तो उसके बाद क्या है, जितने भी ट्रांसप्लांट वाले होते हैं उनको जो रूम या बोला जाता है कि आपने वहां रहना है, उस जगह रहना है जहां पर कोई भी फंगस ना हो
0: जी,
1: मकान बिल्कुल क्लियर हो, साफ सुथरा हो, कोई आपको वहां से कोई बीमारी न लगे, टॉयलेट ठीक हो, किचन ठीक हो, हर चीज को वो देखते हैं। तो बिफोर ऑपरेशन तो वो इतना नहीं परवाह कर रहे थे, आफ्टर ऑपरेशन हॉस्पिटल खुद जाएंगे, चेक करेंगे, अगर उनको वो जगह जहां आपने आपके ऑपरेशन के बाद आपने शिफ्ट होना है वो उनको अप टू द मार्क लगी, तो वो आपको कहेंगे आपने यहाँ शिफ्ट होना है। उसके बाद क्या है कि बिफोर शिफ्टिंग हॉस्पिटल की टीम जाएगी, पूरे मकान को सैनिटाइज करेगी, पूरे मकान के अंदर जितनी भी फंगस ये वो जाला वाला है वो सब ठाप करेंगे, और एक दिन के बाद फिर वो आपको अलाउ करेंगे कि यू कैन मूव देयर। अब मैं जहां रह रहा था, जो मैंने मकान लिया था, मैंने लिया था 60,000 पर मंथ
0: जी। सो हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
1: ठीक है सर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार साथियों, हमारा ये छोटा सा ब्रेक खत्म हो गया है और हम वापस अपने शो में आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं विमल जी से। हम विमल जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप ट्रांसप्लांट के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी में आप शिफ्ट होते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे बात आगे बढ़ती है। तो विमल जी, आपने बताया कि आपने कॉन्सेंट्रेटर और जो भी मेडिकल डिवाइसेज या जो चीजें आपको जरूरत पड़ी थी आपको उन्हें रेंट पे लेना पड़ा था। तो इसके बाद आप हमें ये बताइए कि लंग ट्रांसप्लांट अब जब आपका हो गया तो उसके बाद की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए आपके, क्योंकि एक कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में लंग्स जिनके खराब है या जिनको लंग्स से जुड़ी बीमारियां हैं तो उनको तो बहुत स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो आपने कोरोना काल को कैसे काटा और अभी भी आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं?
2: आप भी बड़ा इस बात को सुन के आप भी बड़े हैरान रहेंगे। नंबर वन ये है कि मैं दिल्ली और एनसीआर के अंदर पहला शख्स हूँ, आई एम द फर्स्ट मैन जिसका लंग्स और हार्ट एक ही दिन कंबाइंड ट्रांसप्लांट हुआ
1: जी।
2: पहला शख्स हूँ दिल्ली के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। ओके, मुझे भी पता है काफी हुए हैं लेकिन लंग्स नहीं। जिसके लंग्स हुए हैं उसका हार्ट नहीं, ठीक है। कट्ठा एक ही आदमी का पूरे का पूरा सेट हार्ट एंड लंग्स का मुझे लगा है 6 जुलाई 2019। आज मुझे 2.5 साल होने वाले हैं। 2.5 साल 6 जुलाई 2019 से पहले मैं पेशेंट था
1: जी।
2: पहले मुझे ये पूछते थे विमल तेरा क्या हाल है, तो अब मैं पूछता हूँ भैया तुम्हारा क्या हाल है
1: जी।
2: तो ये 22 वर्षा हो गया ना
1: जी। बिल्कुल।
2: आज पेशेंट, आई एम नॉट द पेशेंट, आई वुड नॉट लाइक टू कॉल मी यार ये तो पेशेंट है। मैं अंदर से भी खुश हूँ, बाहर से भी खुश हूँ। साथियों खुश इसलिए हूँ कि मेरे अंदर एक विल पावर है जीने की। जिसके अंदर जीने की चाह है ना, बाकी तो क्या कहते हैं, एक कहावत सुनी है कि वो खाक जिएंगे। मुझे ये पूरी कहावत का नहीं पता लेकिन मैं ये अपने ऊपर लेता हूँ, मैं बड़ा जिंदा दिल हूँ। और ये ड्यूरिंग दिस आफ्टर माई ऑपरेशन, मैंने 6 महीने बाद मेरे ऑपरेशन के, इतने मेजर ऑपरेशन के बाद 6 महीने मैंने अपनी कार चलानी शुरू कर दी थी, वो भी हल्के पे। ये भी एक मिराकल है। मैंने बच्चे बैठाए भी, मैं वाइफ को बैठाया, मैंने कहा चलो यार ये तो हो गया सो हो गया, पेशेंट खत्म, अब विमल कुमार शर्मा है। साथियों मैं जिंदा दिली मेरे अंदर इतनी है, अगर आप मेरे से कभी भी फेस टू फेस बात करोगे मैं अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता हूँ, आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। एक ख्वाहिश है लंबी इनिंग खेलने की, तो खेलेंगे। 2020 वाला मैच नहीं है, लंबी इनिंग। तो लंबी इनिंग का मतलब है जितनी भगवान ने मेरे को सपोर्ट किया है, उसने मेरे को मेहरबानी किया है, तो उसका मैं एंजॉय करूंगा। और ये भी नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ मेरे को हिदायतें हैं वो मैं बरतूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
1: विमल जी, तो आप हमारे श्रोताओं को अगर कोई संदेश देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं उनको।
2: श्रोताओं को तो बिल्कुल संदेश दूंगा। साथियों जो भी है मेरे सुनने वाले लिसनर, साथियों ये जो चीज है ना, मैं तो ये कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ अंग ट्रांसप्लांट की किसी को भी ना आए नौबत। नंबर कारण है अपने आप को सेफ चलो, इसके अंदर फैमिली बड़ी डिस्टर्ब होती है, उसके बाद आपका पैसा बड़ा लगता है, और इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि ना कभी हो तो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो। दूसरा, मेरे जैसे इस हिंदुस्तान के अंदर हजारों हजारों की तादाद में जिनका हार्ट, जिनका लंग्स, जिनकी किडनी, जिनकी आंखें, जिनका लीवर, तेरा सटन मोर एट पार्ट्स, एक आदमी अगर किसी को अंगदान देता है तो 8 आदमियों में उसके अंगदान लग सकते हैं। आज मैं जो जिंदा हूँ वो किसी ने तो अंगदान दिए ना, उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। और साथ के साथ वो भी आदमी जिंदा है, वो आदमी मरा नहीं है, उसने अपना घर मेरे घर में बसा लिया, वो भी जिंदा है और मैं भी जिंदा हूँ। तो मैं सबसे एक अपील करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अंगदान कीजिए, आप अपने को रजिस्टर्ड कराइए जहां पर अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, ताकि आपके अंगदान के बाद आप भी जिंदा रहें और जो अंगदान जिसको चाहिए, ट्रांसप्लांट चाहिए, वो भी जिंदा रहे, वो भी आपकी पूजा करता रहे। कारण है कि वो उसके लिए आप गोड हो, फर्स्ट गोड आप हो, अगर आप ना देते तो वो कहां सरवाइव करता। सेकंड गोड इज अवर डॉक्टर्स, तीसरा जो भगवान है वो आपकी फैमिली है बस। और मेरी फिर रिक्वेस्ट है, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अंगदान करने से आपके अंदर एक ना बहुत एक ऐसी चीज जागेगी, रोशनी जागेगी कि हाँ यार वाकई मैंने कुछ दिया है, अंगदान दिए है। मैं तो साथियों यही कहूंगा, आप इसको मतलब सोचो ना, इसमें ये जरा कुछ चीजें होती हैं जो सोचने के लिए नहीं होती। जैसे हमने नहीं सोचा था, हमने ये इमीडिएटली कह दिया था कि इस जिंदगी से अच्छा है या तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं या मैं इस नर्क से निकल जाऊं। तो मेरा डिसीजन था कि हमें यह ट्रांसप्लांट करना है। एक बोल्ड डिसीजन हमारा था, हमारी फैमिली को ये था कि हाँ इस निजात से दिलवाना है। तो मेरी फिर आप सबसे क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है, आप अंगदान कीजिए और आपकी वजह से अगर किसी की जिंदगी बचती है और आप भी जिंदा रहती हो तो ये जरूर करिए। मैं इस चंद शब्दों के साथ मैं चाहूंगा आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, प्लीज कंसिडर दिस। मैं ये किसी फोर्स नहीं कर सकता, ये मन की इच्छा, आपकी इच्छा जागृत होगी तो आप जरूर।
1: दोस्तों ये थे विमल शर्मा जी और हमने आज जाना कि लंग और हार्ट ट्रांसप्लांट लेने के बाद भी, लंग और हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद भी आज ये अपनी लाइफ पूरी तरह से पूरी जिंदा दिली के साथ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो हम ऐसे सभी जो मरीज हैं उनको एक उम्मीद देना चाहते हैं कि आप अपनी जो मन की जो बीमारी है उसको ना बढ़ाएं, एक उम्मीद रखें, एक पॉजिटिव होप रखें अपने आप में, अपने परिवार वालों को भी हिम्मत दें और धीरे धीरे ये फेस निकल जाएगा और जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो और बहुत साल आप माशाल्लाह बहुत साल तक जिएंगे अच्छे से। धन्यवाद।
3: आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलकी एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं, आओ मिलकी एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलकी एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है, और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा। बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
3: मिली तो है।
2: पापो छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
3: लाए हैं।
4: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
3: उससे बड़ी चीज
4: तो क्या लॉकेट,
3: उससे भी बड़ी
2: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
3: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
4: ये तो सोने से भी अनमोल है।
5: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
6: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
7: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
6: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
8: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
9: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
10: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
11: और मैं हूँ विकास।
10: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
11: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
11: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
12: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
13: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
14: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
13: कहाँ तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
14: एक्सक्यूज मी सर।
13: क्या हुआ?
14: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
13: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
14: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
13: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
14: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
13: श्योर
14: श्योर सर।
15: चलो बेबी चाय।
16: थैंक यू।
15: आपने आज की न्यूज सुनी?
16: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
15: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
17: ओह नो।
16: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
15: और क्या।
18: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701-7018-1701-170-91। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया बिरजू बेटा, बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
2: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
2: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
2: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
2: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
2: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े, इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो। अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है? अजीब अजीब चीजें करते हैं यार, मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला मैं शशि हाजिर हुई हूँ तुहां तक कार्यक्रम ले करी माटी दी महक ता श्रोताओं दोपहर दे दो बजे न कने तुहां सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जिहड़ा समय है से तुहां दा रहिंदा है दो ते तीन बजे तक। दोपहर दा जिहड़ा समय है से थोड़ा सुस्ती भरा हुंदा है क्योंकि दोपहर च जिहड़ा समय है से अहां दा हमेशा मन करदा है कि अहां अपनी जिहड़ा निंदर है से पूरी करी लैन कन्नै इसी कन्नै थोड़ा देआ अगर अहां अपना जिहड़ा समय है से किस प्रकार जिहड़े से निकाली सकदे ते दे उप्पर वी अहां जिहड़ा सोच विचार है से जरूर करदे न कन्नै शुरुआत अहां जरूर अपने

0: कार्यक्रम दे करी थी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ चुके होने न। 18 मई 2026 का ये दिन है कने मंडे का ये दिन सोमवार का ये दिन बेहतर खास है। अहाँ का जेड़ा शेड्यूल है से शुरू हो जाता है कने फिर ते अहाँ अपना जेड़ा काम में से करना शुरू हो जाते हैं कने अहाँ दे जेड़ा पहले श्रोता अहाँ कने जुड़ चुके हैं तिना कने अहाँ करनी है गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: सचिन जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तोहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: धन्यवाद जी।
0: जी तो हाँ कुछ ते बोला दी कि तो हंदा ना किए जी।
1: हाँ बोला ने दाढ़ी से कि ने मेघनाथ ना।
0: जी मेघनाथ जी क्या काम काल गया तो हाँ क्या करा दे?
1: कुछ नहीं बस खाना खाता है ना उन लेटी ही होगा ना तो आधे गाने सुन ले उन 3 बजे तक।
0: जी अच्छा कार्यक्रम च जिड़ा रोने कैसे जरूर उन तो हाँ लगानी है ना जी। मौसम किस प्रकार है कि इतनी की धूप जड़े से लगी हो?
1: आज ठीक है तो तगड़ी है
0: जी। अच्छा धूप ठीक ठाक है ना जी?
1: हाँ कल ते है खराब
0: जी। कल ते फिरी ते मौसम खराब दस्या जी।
1: हाँ जी हाँ
0: जी। तब मेघना जी आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके
1: सुनाई दिया बंदिया तेरे कम नहीं मुकने।
0: जी जी कम तो कदी भी नहीं मुकदे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। गाना तो बड़ा प्यारा है ना जी।
1: हाँ जी
0: जी जरूर तुहंदी जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। ए है तो हाँ सारिया का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकते। शुरुआत हाँ कर देना अपने कार्यक्रम दी इस प्यारी दे गीत कन्ने।

माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपने रेडियो तो शशि कन्नै। तो कार्यक्रम च जेड़ा समय दी हाँ गल करिए तो 2:10 कार्यक्रम च होई न कन्नै मौसम दी जेड़ा जानकारी है सभी तुहां तक पहुँचाना जरूरी है। मौसम दे अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते बड़ा ज़्यादा जरूरी है। कने जितने भी जेड़ा किसान हैं तिना वास्ते तो वैसे भी मौसम दे अनुसार अहाँ चलते न ताई यहाँ अपने जेड़ा काम मन से करी पाते न। तशो तो कल ते फिरी ते बारिश जेड़ा है से है बारिश का जेड़ा दौर है से फिरी ते शुरू होने वाला है। कने बारिश का दौर जेड़ा है से चलना है 3 मई तक। येलो अलर्ट जेड़ा है से जारी करी ते है। कने अगर हाँ हिमाचल प्रदेश की गल करिए तो मौसम भी कुथी ना कुथी अपना जेड़ा करवट है से बार बार जेड़ा है से बदला है। कई राज्य जेड़ा से बारिश है कई राज्य जेड़ा से धूप लगी हो है फिर भी मौसम जेड़ा से अपना मिजाज जरूर बदला है। कने अजकने दिने की गल करिए या अजकने दिने दे मौसम की अहाँ गल कर दे तो जेड़ा धूप है से बड़ी प्यारी दे खिली हुआ है। कने कल की अगर अहाँ गल करन तो बारिश का जेड़ा अलर्ट है से मौसम विभाग ने जेड़े से दसी ते है 19 मई ते 3 मई तक जेड़े से कई हिस्सों जेड़े से बारिश कने बिजली चमकने की जेड़ा संभावना है से जरूर मौसम विभाग ने जताई हुआ है। तो मौसम के अनुसार चलना बड़ा ज़्यादा जरूरी है। मौसम विभाग ने चंबा कांगड़ा कने कुल्लू जेड़ा जिले न तिना च 30-40 किलोमीटर दी प्रति घंटे रफ्तार कने तेज हवा चलने दा जेड़ा अलर्ट है सभी दस्से कने इसी कने बारिश कने बिजली गिरने दा जेड़ा येलो अलर्ट है सभी जरूर जेड़ा से दस्से है। तशो तो इसी प्रकार जेड़े से तुह अपने काम कार जेड़ा से करी सकते घरे दे क्योंकि अहाँ दे काम कार जेड़ा से मौसम के अनुसार चलते न कने हूँ जेड़ा किसान हैं तिना वास्ते वैसे भी कणका ते फ्री होए होने न कने कणका जेड़ा से धो दे होने न कने बाकी लसन प्याज जेड़े से तिदी भी तैयारी जेड़े से शुरू होई हुए पुटने दी कने बाकी काम जेड़ा से अहाँ दे छोटे मोटे चले होंदे कने अगर अहाँ जालू भी घरे ते बाहर निकल देना या कुछ घूमना फिरना जाते न तो मौसम दे नज़र जरूर जेड़ा से अहाँ जो दौड़ानी चाहिदी। तो ये जानकारी तुह तक पहुँचाई है कने तुह सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जेड़ा अहाँ दा नंबर है पहले तुह सारी नंबर नोट करा फिर इस नंबर पर कॉल करा। नंबर है 7081817091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। वैसे तो यह दोपहर का टाइम होंदा थोड़ा सुस्ती भरा होंदा पर अहाँ जेड़े से तुहंदी सुस्ती गायब करने वास्ते जरूर तुह तक जेड़ा माटी दी मह कार्यक्रम का सफर तुह तक रहिंदा है कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम के सफर कने जुड़ते न ते इसी कन्नै ये फरमाइश तुह तक पहुँचा दे न तुह सारी भी इंजॉय करा।

0: तशुदों काम बंदे आ मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी जांदा। बिल्कुल सही गल जड़े से इस गाने च बोलियो है। काम जड़े स्याहां दे कदी भी खत्म नहीं होंदे, कने बंदा जड़े से मुकदा मुकदा मुकी जांदा। इस दुनिया जो जड़े से छड़ी करी चली जांदा, फिर भी जड़ा अहां दे पिछे काम मन से चले रहंदे, कने काम उसी प्रकार ही चले रहंदे, कने बस जड़ा यादा न से अहां कुथी ना कुथी तिना जो ही याद जड़े से करी पांदे न। तो इसी प्रकार अहां यही बोलना चाहेंगे कि काम भी ज़रूर करा, पर अगर तुह जो लगता है कि काम करना भी यहाँ वास्ते ज़रूरी है, कने अपनी सेहत का ख्याल रखना भी यहाँ वास्ते ज़रूरी है, सभी ज़रूर करा। कई बार होता ना कि यहाँ काम दे चक्कर च अपना जिहड़ा ख्याल है या अपनी ओर ध्यान देना जिहड़ा है से भूली जांदे न, तो ऐसा तो हाँ बिल्कुल नहीं करना है। अपना ख्याल रखना है, कने अपने का भी ज़रूर जिहड़ा है से ख्याल रखना है। पर आज के दौर की अगर अहां गल करिए जिहड़ा हकीकत है तिहादी, तो कुथी ना कुथी जिहड़ा है से हर कोई सोशल मीडिया पर बिजी है, हर कोई अपना जिहड़ा मोबाइल फोन च बिजी है, कने अहां दे जिहड़ा अगले श्रोता न पहले कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: नमस्ते मैन जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी धन्यवाद
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दी कने
1: तुहांदा? मैं बैनाथ से बोला भाई, बिहारी लाल
0: जी। जी ता क्या हाल चाल है वैजनाथ वालेन दी जी?
1: बढ़िया बढ़िया जी।
0: मौसम कदे है उस साइड?
1: मौसम तो गर्मी है
0: जी। अच्छा गर्मी है जी। ता कणका दा काम होई है उस साइड की अली है?
1: होई है जी
0: जी। अच्छा होई है ता अच्छी गल है ना जी। जी और नोई ता जी?
1: बस ठीक, थोड़ा ठीक ठाक।
0: हां जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
1: अच्छा जी अच्छा।

0: जी
1: जी स्वागत है जी तुम्हारा रेडियो गुंजन धर्मशाला से। ठीक ठाक है ना
0: जी
1: जी? तुम कुछ ते बोला दे कने तुम्हारा ना क्या है जी?
0: जी दारू से बोल रहा था जी, हरि सिंह जी। हाँ
1: जी हरी सिंह जी ठीक ठाक है ना
0: जी, हाँ जी, ठीक हाँ जी।
1: जी? क्या काम तुहां लगाया, क्या करा दे?
0: कि बेटा सोने का काम लाया, आराम करा दे।
1: जी मैं यही गल बात करा दी थी कि दोपहर का समय हुंदा तां कुथी ना कुथी जेड़ा सुस्ती है से अंदर अंदर छाई हुंदी ना जी।
0: हाँ जी, हाँ जी, गर्मी दे दिन ना बड़ा काम भी करना, तम आदमी थकी जाता गर्मी च। हाँ
1: जी जी
0: जी,
1: जी जी ता और नई ताजी ताड़ी दी?
0: नई ताजी क्या सुनानी, नई ताजी तो कोई नहीं है।
1: जी कोई बदलाव?
0: बदलाव तो क्या होने, बदलाव ये कि कभी बरखा हो जा रही, कभी मौसम गर्म हो जा रहा।
1: जी तो फिर ते मौसम अपनी करवट बदलना शुरू हुई है ना जी?
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जी तो 19 ते 23 तक जिड़े से फिर ते अलर्ट आ जो जारी करी ते है।
0: अच्छा फिर ही वर्षा है।
1: जी जी
0: अच्छा
1: जी जी तो पहले भी मौसम इस प्रकार ही था कि मतलब सेम ही था
0: जी,
1: मौसम? मतलब कितना ज़्यादा चेंज हुई है जी?
0: मौसम बड़ा बदलाव आई है इस मौसम में।
1: जी अच्छा बड़ा बदलाव आई है जी। मतलब मौसम दा कोई भरोसा नहीं है, गर्मियों च भी जड़ा ऐसे ठंडी वाला एहसास होता ना जी?
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जी जी जी ता आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके।
0: नंजो गीत क्या भजन सुनाई दिया, गुआ उतर पहाड़ा ते आईया।
1: जी पीले रात के
0: हाँ जी,
1: जी जरूर ये गीत तो हाँ तक पहुँचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा
0: थोड़ा भी धन्यवाद महाराज।
1: जी। तारीशो तो बर्थडे ने अपने कार्यक्रम दे सफर जगह कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान देना, तुहां सारे भी एंजॉय करा।

0: श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। इस गीत की फरमाइश आह जो आयु वे वैष्णा ते कने तिना दा ना वे बिहारी जी तिना तक कह ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी जरूर इंजॉय किया होने कन्या जहाँ जिड़ा गल बात करा देन से करा देन कि अजकने दौर की अगर अहाँ गल करिए कुछ ना कुछ हर टाइम अहाँ मोबाइल फोन च जड़े से अपना समय जड़े से दिन देन पर बेशक अहाँ अपनी जिंदगी च जागरूक कैन या अपनी जिंदगी च अग्गे बढ़ा देन पर अपन दा जड़ा प्यार है या अपन दा प्यार होना भी अहाँ वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है। कने कुछ ना कुछ सोशल मीडिया दा जमाना जड़ा है से अहाँ जो अपने ते भी दूर करा दे है कने अहाँ जो अपनी प्रकृति ते भी दूर करा दे है कने अहाँ जो अपनी जड़ा बचपन है उसते भी दूर करा दे है। उन तो हाँ सोचा दे उन्हें कि कहे दूर करा दा हर टाइम अहाँ अपना जड़ा समय है से सोशल मीडिया पर दे दे ना हाँ अपनी प्रकृति जो टाइम दे पा दे ना हाँ अपने जो टाइम दे पा दे ना हाँ अपने वास्ते समय जड़े से निकाली पा दे ना हाँ अपने बचपन जो खुली करी जी पा दे ता दिखा कुछ ना कुछ यहाँ अपना समय जड़े से बर्बाद तो ज़रूर करा दे ना सभी मोबाइल फ़ोन पर। अगले जड़ा श्रोता न तिना कहने कर देन गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी हाँ जी। तो मेरा नाम याद रखिए
0: जी। तो हाँ कुछ ते बोला दे।
1: मैं बागनी
0: जी। बागनी ते बोला दे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। क्या हाल चाल है बागनी वाले दे?
1: बड़े जी बड़े बढ़िया। कणका गा रहे
0: जी। कणका ली गा दे।
1: कणका गा रहे ने
0: जी। अच्छा ली फ्री नहीं होए?
1: हाँ जी
0: हाँ जी जी। अपना नाम भी जरूर दसी दिया जी।
1: मेरा नाम राकेश है जी।
0: जी क्या है?
1: राकेश कुमार
0: जी। अच्छा राकेश कुमार।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। राकेश जी और बागनी दी नोईता जी
1: पुरानी है मैडम
0: जी। अली इस साइड होए नहीं बेले?
1: ना जी ना जी
0: जी। तो फिर ते मौसम खराब दस है जी। कल ले ते
1: मौसम खराब है।
0: हाँ जी त्रेई तक है।
1: अच्छा।
0: जी जी। तो मौसम के अनुसार ही जड़े से कामकार करना जरूरी है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी जी। तो राकेश जी आज तू हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी? जी कोई भी या अपनी पसंद दा तो हाँ सुनना है कोई?
1: आई वो मेरे कर्म मचाड़ा हो
0: जी। कुंदिया
1: आई वो मेरे कर्म मचाड़ा हो।
0: तुम्हारी आवाज कुछ क्लियर नहीं हो दी जी।
1: आई वो मेरे कर्म मचाड़ा हो सर हो
0: गया जी। जरूर तुम्हारी फरमाइश तो तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुम्हारा। ए तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अगले जेड़ा श्रोता न सभी यहाँ कन्ने जुड़ चुके न तिना ते भी पूछ दे न से कुथु ते बोला दे कन्ने तिना दा ना क्या है। हेलो
2: हेलो
0: हेलो। नमस्ते जी।
2: नमस्ते मैडम जी।
0: जी नमस्ते जी। तो हुंदी आवाज बिल्कुल कम कम हो दी जी।
2: नमस्ते मैडम जी।
0: जी उन ठीक हो दी।
2: अच्छा जी और ठीक ठाक न मैडम जी?
0: जी हाँ जी ठीक ठाक है जी। तू हाँ अपना परिचय जरूर दे देन।
2: सुनील कुमार कोठिया दे बोला जी जलोट दे।
0: जी सुनील कुमार जी कोठिया जलोट दे बोला दे।
2: हाँ जी मैडम जी।
0: जी ता कोठिया जलोट आ लें दे क्या हाल चाल है जी?
2: बढ़िया न मैडम जी।
0: क्या काम कार छेड़िया उस साइड?
2: कुछ नहीं मैडम जी बस इलेक्शन दी तैयारी चली हो पंचायत दी।
0: जी जी सोच विचार चल रहे
2: ना जी मैडम जी। हां जी हां जी
0: जी। चलो अच्छा उम्मीदवार हां बढ़ांगे ताई आ वास्ते अच्छा है ना जी।
2: हां जी मैडम जी।
0: जी जी
2: हां जी
0: जी। गर्मी कितनी की है उस साइड?
2: गर्मी तो इस टाइम तो ठीक है मैडम जी।
0: जी अच्छा ठीक है।
2: जी खरा धुप्पा भी इस टाइम तो मैडम जी।
0: जी तां
2: हाँ
0: फिर
2: जी
0: ते जेड़ा मौसम है सै अपनी करवट बदला दा है ना जी कल्ले
2: हाँ जी हाँ
0: ते
2: जी दस्या मैडम जी तो। हाँ जी
0: जी
2: हाँ जी
0: तां सुनील जी तुहें क्या लगदा अजकने दौर च हां अपने ते भी कुथी ना कुथी अलग हो दे या
2: हाँ
0: हां
2: जी बड़े
0: अपने
2: की बड़े होवा दे मैडम जी। हाँ
0: जी तो
2: जी
0: कारण क्या है जी तुहें क्या लगदा क्या कारण है इदा
2: कारण ये है मैडम जी मोबाइल च। हाँ
0: जी
2: जी मोबाइल च बिजी रहना 24 घंटे। हाँ
0: जी
2: जी
0: जी तो चलो
2: हाँ जी
0: मोबाइल दे वैसे तो देखे जाए तो फायदे बड़े है
2: फायदे
0: ना
2: तो है
0: जी।
2: मैडम जी नुकसान भी बड़े ने मैडम जी ना।
0: जी बोल देना कि हर चीज़ का फायदा भी होंदा नुकसान भी होंदा
2: नुकसान भी होंगे।
0: अगर
2: हाँ जी
0: हाँ लिमिट ते ज़्यादा खाना खाई लेंदे ना तो कुछ ना कुछ हाँ जो नुकसान देख रही जाता है ना
2: नुकसान।
0: जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: तो
2: मैडम जी
0: इसी प्रकार अगर हाँ मोबाइल फोन का ज़्यादा यूज करते ना या हर टाइम मोबाइल फोन ची रहते ना तो कुछ ना कुछ यहाँ अपने जो भी समय नहीं दे पा दे
2: नहीं दे इंदे मैडम जी। हाँ जी हाँ जी
0: जी
2: सही
0: तो
2: बात है।
0: अपना बचपन भी यहाँ खुली करी नहीं जी पा दे
2: हाँ जी अगर बुजुर्ग बैठे होंगे मैडम जी तो मतलब कुछ समझा दे हो तो अभी मतलब फोन नहीं चला गया मतलब सुनना नहीं।
0: जी जी
2: हाँ
0: कने
2: जी
0: बुजुर्गा दियाँ जेड़ा गल्ला ना से तो वैसे भी यहाँ वास्ते बेनिफिट होनी है ना जी
2: हाँ जी बेनिफिट होनी है मैडम जी
0: जी
2: पर आज
0: जी
2: का जमाना ऐसा लग गया मैडम जी कौन एक कन्ना सुनना दूं मैंने काढ़ी है ना लड़ा
0: जी
2: ही है
0: जी
2: बोल दे लाना बुजुर्ग ये था चल
0: जी
2: बात भी चाहती मैडम जी गल याद है।
0: जी जलूस में निकली चुका होता ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी मैडम जी
0: जी समय ऐसी चीज है कि सब कुछ सिखाइंदा ना जी
2: सिखाइंदा मैडम जी। हाँ
0: पर
2: जी
0: हाँ उस टाइम समय की कदर नहीं करते ना जी
2: कदर नहीं करते मैडम जी सही
0: जी
2: गल है।
0: पर समय
2: हाँ
0: खुद
2: जी
0: ब खुद हाँ जो कदर करना सिखाइंदा
2: हाँ जी हाँ जी मैडम
0: जी
2: जी
0: जी तो सुनील जी
2: जी
0: आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगे जी।
2: आज गाना सुनना है मोहित गर्ग दा कांगड़ी दी बरात।
0: जी कांगड़े दी बरात
2: हाँ जी मैडम जी
0: जी जरूर है गीत तुह तक पहुंचांदे जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
2: धन्यवाद मैडम जी
0: जी
2: नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते जी। ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ता श्रोताओं बढ़ दिन कार्यक्रम दे सफर च अग्गे कन्नै तुहां जो ले चलदे न फिरी ते फरमाइश दी ओर सुनदे निसा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुहां सारे भी इंजॉय करा इस गीत की फरमाइश अहां जो आई वे दाड़ी ते कन्नै तिना दा ना वे हरी सिंह तिना तक अहां ये गीत पहुंचा देना कन्नै जितने भी बाकी श्रोता ने सभी जरूर इस गीत जो भी इंजॉय करा दे उन्हें ना कन्नै मेरी जेड़ा गल बात है तेहा जो भी जरूर जेड़ा इसे इंजॉय करा दे उन्हें ना।

रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने फिर त्यहाँ वापिस आइयो ना अपनी गलबात ऊपर गलबात अहाँ दी ये चलियो कि कुथी ना कुथी आज कने दौर दी अगर अहाँ गल कर देना तो हाँ अपनापन भी जरूर जड़ा से कि दुए अंदर दिखने जो नहीं मिल रहा था। हर कोई सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा बिजी है कि यहाँ अपने वास्ते जड़ा समय है से नहीं निकाली पा दे। अजकने दौर दी जड़ा हकीकत है से वे डिजिटल दुनिया। हर कोई डिजिटल दौर इतना ज़्यादा बिजी है कि यहाँ थोड़ा दिया जड़ा रियल वाली जिंदगी है वह जो बिल्कुल ही भूली हो। ज़्यादातर अहाँ अपना जड़ा ज़्यादा समय जड़े से दे देना इंस्टाग्राम जड़े से रील्स पर जड़े से ज़्यादा हाँ दे देना, चाहे से कोई भी यहाँ काम कर देना या ज़्यादा अपना जड़ा समय है यहाँ सोशल मीडिया पर लगा देना। अपने जो समय जड़े से यहाँ नहीं दे पाते से कारण भी सोशल मीडिया है। अगर यहाँ अपनी फैमिली कन्ने गल बात करा देना तमी यहाँ मोबाइल फ़ोन जड़ा न से मोबाइल फ़ोन जितना ज़्यादा बिजी है कि यहाँ अपने जो समय नहीं दे पा दे कने अपने ही मोबाइल फ़ोन च बिजी है न। बिजी इस प्रकार है चाहे यहाँ अपने कन्ने बैठे हो न पर दिना दी जड़ा गल है तिस जो अनसुना करा दे। अहाँ वास्ते यही है कि मोबाइल फ़ोन है तो सब कुछ है। बच्चे जड़ा न ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन ची गेम्स वगैरह खेला दे कने अपने बचपन जो जड़ा है से खुली करी नहीं जी पा दे कने बाकी कुथी ना कुथी चलो मोबाइल फ़ोन दे फायदे भी बड़े न नुकसान भी बड़े न। फायदे दी गल करी अगर हाँ शिक्षा च फायदे दी गल कर दे न अगर कोई भी आंसर है या क्वेश्चन है तो इसका आंसर अहाँ जो समझ नहीं होता तो से अहाँ अपना जड़ा है से रिसर्च करके जड़ा है से उस जो दिखी सकते कने उस जो समझी सकते। अगर तो हाँ सिलाई कर दे नया जड़ा डिज़ाइन है से सीखना चाहते न तो हाँ ज़रूर यूट्यूब पर जाकरी जड़ा है से डिज़ाइन कोई भी जड़ा है से सीखी सकते न चाहे से सिलाई दे रिलेटेड कोई भी डिज़ाइन है से तो हाँ सीखी सकते न। गल अहाँ कर देना खाने दी नए नए पकवान जड़ा है से अहाँ मोबाइल दे थ्रू ही जड़ा मोबाइल दे थ्रू यहाँ सीखी सकते न। अगर तो हाँ जो कोई रेसिपी समझ नहीं होती तो हाँ मोबाइल फ़ोन पर जड़ा है से कोई भी जड़ा रेसिपी ऐसे बनानी है तो हाँ बनाई सकते न। तो छोटी छोटी जड़ा गल्ला न जड़ा हंदी डेली जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा कर दिया न पर से यहाँ पर निर्भर कर दे कि यहाँ मोबाइल फ़ोन दा यूज़ किस प्रकार कर देना। अच्छी चीज़ा पर कर देना कि बुरी चीज़ा पर कर देना जिना कि यहाँ अपनी सोच सकारात्मक रख देना कि नकारात्मक रख देना से यहाँ पर निर्भर कर दे। तो श्रोताओं फिर यहाँ थोड़ा दे आगे बढ़ देना कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना सुंदर ईसा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

श्रोताओं तुम सारे सुनिया गीत। इस गीत की फरमाइश अह जो आई वे कोठियां जलोट ते कने तिना दा ना वे सुनील कुमार जी। सुनील जी तक अह ये गीत पहुँचे आ कने तुहां सारिया भी इंजॉय कीता। तो सारे जो पता है कि कार्यक्रम दा जिहड़ा दोपहर दा ये समय है से 2 बजे ते 3 बजे तक तुहां तक रहिंदा है। कने हुण जिहड़ा समय जिहड़ा है से थोड़ा जिहा धीमा पे ही है। कने समय का जड़ा है से पता नहीं चलता, अपनी जड़ा रफ्तार लेकर जरूर चलता है। कने अह जो समय के अनुसार चलना जरूरी है। फिर एक थोड़ा जहाँ अगर वर्ते हैं कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं।

कानून दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दो शशि कन्ने कार्यक्रम दा जिहड़ा समय है सेथु संपन्न है तुहा सारे ही अपनी रेडियो दो शशि दिया अनुमति कन्ने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के

उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117091 7018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया बिरजू बेटा, बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
2: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
2: लाए है।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
2: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
2: उससे भी बड़ी।
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
2: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए है, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: यार लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।
1: पामा गारे सा। गाओ। गाओ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा।
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव है।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, और मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो। अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंचन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और आऊँ तो जो कि तुम अपना आरजे वेडियो जो कि सचिन कपूर तुंदा स्वागत करनो हार्दिक अभिनंदन करनो हाँ क्या हालचाल चाल श्रोतो तुंदे उम्मीद करनो तुंदे हालचाल खरे भुने ठीक भुने और अपने अपने घरे के अंसो तो सब बेखुश भुने ही न ता चलिए जी कार्यक्रम मंच बढ़ दिन हगूँ और कार्यक्रम मंच अब हगूँ तो बढ़ना ही पैना श्रोतो कजो कि कार्यक्रम रे आगाज की सो बुछुरा तो सब श्रोता सो कि जुड़ी सकते हैं मिली सकते हैं अपना पसंदीदा गीत किया सो दस सकते हैं ताकि अह तस गीता जो किया सो तुसु तक जरूर पहुँचान इन दी हमेशा तो कोशिश रही हो कि इन द जो भी श्रोता सो कि जुड़ देन तेरा पसंदीदा गीत है जरूर तिया तक पहुँचान और मनु तक भी पहुँचान इवन की और कोशिश और इन दी श्रोतो इन दी कि कोशिश ये रन दे श्रोतो इन दी कि अह तस हिसाब हो गए किया सो अपना अपने इस कार्यक्रम जो किया सोता से साब हो गए रखन कि एक कार्यक्रम किया सो न केवल गीता होने वास्ते या बल्कि इस कार्यक्रम तो अन्य जानकारी के अनुसो भी सो पता लग दी हिन है ना और सोगी सोगी जानकारी सोगी सोगी सो तो अह अपनी रूट्स थो किया सो जुड़े रहन सो बड़ा अहम और मजबूत हिस्सा किया है अपनी रूट्स थो किया सो जुड़े रहन बरहाल इन पहले श्रोता असोगे कनेक्टेड हैं पुजदन कुंड वल्लू दिन और कड़ी थो वल्लू कर दे हिन नमस्ते जी
1: नमस्ते सर जी नमस्ते जी
0: नमस्कार जी नमस्कार ठीक ठाक
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी तुसा सर जी
0: बढ़िया जी बढ़िया दुपता बड़ी काफी ज्यादा बोने मुझे लगता तुंदी किनारी
1: बड़ी परे सर जी गर्मी बड़ी परे
0: हाँ बहुत ज्यादा बोने कर चुके आज इस किनारी काफी ज्यादा धूप था हाँ
1: जी हाँ जी
0: और ठीक ठाक करे लुगरन
1: बस बढ़िया सर जी ठीक ठाक जी तो उनके प्रोग्राम सुना दे
0: अच्छा अच्छी कुन दिन गई थोड़ना तो सु प्रोग्राम में
1: आज सुजादा भारद्वाज दी आवाज सुनाई
0: हां जी
1: गल सुजादा भारद्वाज दी आवाज गाना ना गल छेड़ लगने दी
0: गल छेड़ लगने दी हां जी
1: हां जी सर जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर तू सु गी थोड़ना ले है
1: हां जी धन्यवाद सर जी नमस्ते जी
0: धन्यवाद जी धन्यवाद नमस्ते श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वीडियो गुंजन धर्मशाला तो ये सब भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस वक्त इन दी अपनी गप्पा गेंद सो चल रही हैं तो चलिए कार्यक्रम जो होगा बड़े दिन श्रोतो आज जी के आऊँ तू दसना चाहता कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी हा और सोगी सोगी श्रोतो कांगड़ा में आ गया सो कांग्रेस रा कब्जा भी हा जी बिल्कुल बीजेपी जो दो स्थान पर मिली जीत लेकिन छिया थो चूर निकाय पर किया सो कांग्रेस से कब्जा किया सो करो हा शो तो और बिल्कुल बिल्कुल करो हा हिमाचल प्रदेश वे कांगड़ा जिला में किया सो संपन्न बुचुवे छिया नगर निकाय वे चुनावी नतीजे थो किया सो राजनीतिक हलचल जो तेज करू कर दी है राजनीतिक हलचल की सो तेज भोई है श्रोतो जिला वे छिया प्रमुख शहरी निकाय वे वास्ते किया इस पर कड़े मुकाबले में किया सो सत्ताधारी दल कांग्रेस से किया सो शानदार प्रदर्शन करो है और विपक्ष जो किया सो पिछाड़ी कर रखी देता है चुनावी परिणाम रे मुताबिक कांगड़ा जिला वे छिया सीटा में से किया सो चौर पर किया सो कांग्रेस से अपना परचम के शतों सो लहराओ हा जबकि मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी जो महज दुई सीटा थो ही किया सो संतुष्ट बुना पे हुआ बहरहाल इन अगले श्रोता सो की कनेक्टेड पुस्तन कौन बल्लू दिन नमस्ते जी
2: हाँ जी नमस्ते सर जी
0: हाँ जी नमस्ते सर जी नमस्ते
2: ठीक ठाक है
0: बहुत बढ़िया जी कौन बल्लू दिन और कड़ी था बल्लू दिन
2: सची बोलना बेना
0: हाँ जी
2: सची बोलना बेना थे
0: अच्छा अच्छा सची जी बेना थे बोल रहे दिन
2: हाँ जी
0: अच्छा क्या क्या करो कर दिन सची जी तो है और कर लगुरिन
2: अम्मा कारे लगे
0: अच्छा कम्मा कारे लगे ना
2: हाँ जी
0: अच्छा शशि जी, कुंडे गीत के ऐसा तो सुनना
2: नहीं उनमें
0: चली गुड़ में एक
2: हाँ जी
0: ठीक है शशि जी, जरूर तो सुई गीत होने लगे है ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी
0: ठीक है जी, धन्यवाद।
2: हाँ जी
0: चलिए श्रोतो, कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा के अंश तो सब ये ट्यून करूरी ना, और कार्यक्रम में फरमाइश और दौर के ऐसो सो ज़रूर पूरा करना है बहरहाल, तो सब के ऐसो ज़रूर बनी सकते हैं, और इन खास कार्यक्रम चल रहा हाथ योगी भी तो ये ज़रूर बनी सकते हैं। श्रोतो चुनाव संवाद जतिमा है जो पंचायती प्रतिनिधि हिन जो खड़ रहे हिन प्रधान उप प्रधान पद वास्ते तैयारा किया सो है तैयारी के श्रोताओं से है तैयारी गल के सोतु सो तक पहुँचाओ कर दें, तैयारी गलबात पहुँचाओ कर दें, तैयारी इंटरव्यूज़ के नसो भुच्चू कर दें हिन और तुसु तक पहुँचाओ कर दें। भारत हों के कार्यक्रम की ऐसा चलता है दत्ते जो यो लोग प्रधान रहे जो यो लोग प्रधान पद वास्ते खड़ू रंटी का चतहर थो सुनील उफ तूनु भाई त्यारा इंटरव्यू किया सो दत्ता चलना हाँ श्रोतो भारत हूँ अक वेड़ी गुंजन धर्मशाला में तो जरूर तो है होने तस कार्यक्रम जो कि कस प्रकार विजन किया सो तुनु जो लेकर चल रहे हैं। बहरहाल कार्यक्रम जो थोड़ा करे आगो बढ़ श्रोतो, और कार्यक्रम मंच अब आगाज करना जरूरी है, पहले आगाज कर लें देन फिर फरमाइश दौर के सो है तुंदी फरमाइश आगे सो है पूरी जरूर कर ले सो तो, लेकिन आइया आगाज कर दिन कार्यक्रम रहा इस प्यारे दे गीता सो की बनी रही है तो ये सब आरजे सचिन कपूर सो के गूंज अपने बन रही और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता असूगी बन रहे हैं असूगी जुड़ रहे हैं त्यारी सब मेरी गूंज ता चलिए उन्होंने तो सब ये प्यारे दे गीत

श्रोता एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वीडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉ कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो बिल्कुल लाइव चल रही है तुंदे सभी रे रेडियो सेट मा तो है सब श्रोता जुड़ी सकते हैं श्रोता 7088889 पर नंबर आख मुख है फ्री तू हो गए शेयर कर दें साझा कर दे 7088889 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं श्रोताओं बिल्कुल ही किया श्रोताओं सो काफ़ी हाई वोल्टेज मुकाबला किया सो भचूरा धर्मशाला मंच धौलाधार री वादी में किया सो कोली कोली ही गूंजरा श्रोताओं और धर्मशाला में देश भर तो के न सो कोली रे फैन पूछ रहे हैं और पंजाब किंग्स तो ज़्यादा आरसीबी समर्थक के है सो हिर ने जो किया सो मुड़े थी है श्रोताओं और त्राय मैच बिल्कुल इंदुनाग महाराज जी भी मतलब कृपा था किया सो त्राय मैच भुचे गए है ना कजो कि तो ये रुकी जाना है पहले मैच तो तैड़ी वाती इतनी ज़्यादा बरखा थी श्रोताओं बहुत ज़्यादा भयंकर किया सो बरखा थी भैगा तक बरखा रही हो रही थी त्राई मैच तो पहले इंदुनाग जी अपना कमाल किया सो दसू कमाल रहा खेल दसू कजो कि धर्मशाला में अलर्ट रहे बीच अलर्ट थो है ना जदाड़ी मैच थी है ये पिछले छड़ी करी पिछला है ना तो लेकिन जड़े पहले मैच तो तैड़ी पूरा अलर्ट तो फिर तथों बाद दुआ के हुआ तैड़ी भी अलर्ट के सो जारी तो शो तो धर्मशाला में अलर्ट रहे बिच गया सो मौसम साफ रहेगो मौसम सुहाना रहेगो और मैच बचगो कसियो भी किया सो कोई नुकसान ना हुआ सुहाने मौसम में धौलाधार रिवादी माँ किया सो सुहावने माहौल माँ किया सो आईपीएल मुकाबला बचगो इतों ज़्यादा अच्छी गल एच पी सी ए वास्ते और तड़ी वे लोकल वास्ते किया सो क्या बोल सकते हैं शो तो है ना तथों बाद मैच है नथों बाद जाहिर दे गया लंबा ट्रैफिक किया सो लगना थो और गड्डी कैन सो मतलब यहाँ कछु भी चाल की है सो गड्डी चलनी थी है ना मनो परेशान बुने थी है हाँ कजो कि पार्किंग भी हल्की पे बुने थी इन वास्ते तो सोचा हजार रे सब हो गए मनु के छुटना की टाइम मता तो है कितना करी किया सो सिस्टम जो मैनेज कर सकते हैं कितना करी तो है किया सो मैनेजमेंट अपने दस से सकते हैं 100-200 बंदा बुआ तो भी बंदा थोड़ा गरीब मैनेज कर लेंदा चीज़ा लेकिन जने हजार रे सब हो गए किया सो जनता निकल देता थोड़ा करे सिस्टम भी किया सो फेल बुंदा नज़र इंदा जी हाँ आरसीबी और पंजाब किंग्स 11 रे मैच ख़त्म भुने तो बाद सिस्टम फेल नज़र आ शो तो चलिए चलते हैं श्रोताओं और अब कार्यक्रम मंच किया सो फरमाइश का दौर पूरा कर दे हैं और धीरे धीरे फरमाइश ही और है सब भी चल दें बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो गए गूंज अपने बन रही और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता सोगी बन रहे ना सोगी जुट रहे हैं

0: শুধু এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধরম চলা তো এস বি টিউন কো রে কার্যক্রম ইন্দি আপনি কা বাগান এস চল রিন সো জাদা ভারদ্বাজ শ্রী আওয়াজ মে গীত তো শ্রোতো অর আইয়া কার্যক্রম জো ফিলহাল হে ফির আগো বড়ন দে হিন অর চলি কুড় মেট হো কুড় মা দে ডেরে জো ईशान भारद्वाज री आवाज में ये गीत था। बहरहाल चलते हैं थोड़ा करी और हगू श्रोतों है और लेकिन चलते हैं दूसरे भी इन श्रोता री किनारी तो श्रोता भी ऐसे हो गई कनेक्ट के सो बोल सकते हैं श्रोताओं 7088879 पर कॉल करे गए नंबर आख मौके फिर आऊँ तू होगे शेयर करें 10087088709 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत सुन सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। लेकिन यह गल खासा ख्याल रहा कि जानकारी किया सो रेडियो मंच श्रोताओं हर बार बलनों के दसने लायक जरूर हुआ रेडियो मंच गल करने लायक किया सो जरूर हुआ। बहरहाल इन श्रोता गण अस होगी कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बल्लू कर दिन और कड़ी थो बल्लू दिन नमस्ते जी नमस्कार जी नमस्कार कौन बल दिन और कड़ी थो बल दिन जनाब अच्छा सुकड़े ते माया और माया जी ठीक ठाक ने राजी बाजी अच्छा कर लुगरन कैलूर कमाना
1: अच्छा कमाना जबर बड़े छुट्टी
0: अच्छा और नहीं ताजी कुछ ना अच्छा कोई नई ताजी नहीं
1: हाँ जी
0: कोई नई ताजी नहीं मिलो
1: हाँ जी ये तो सुन गया कुड़माला
0: कुड़माला गीत सुनना
1: कुड़माला
0: ठीक है जी जरूर

कुछ भी नहीं आया, ये तो जीरो आया, ये तैयार तैयार कजो कि वक्त रहा कोई भरोसा नहीं सो तो कहने ने वक्त किया सो पलटी के चक्कर ने वक्त किया सो मतलब चढ़दा सूरज किया सो जो कहने ने किया बादल टिका ना सूरज सूज पिया है ना। तो कभी भी कसी हो गया हम तो हमेशा बोलन कि बुरा मत करा कसी रहा बुरा मत सोचा कसी रे बारे और खरा करा तुम भी खरा किया सो जरूर होना अपने कर्मा जो खरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो तुम बहरहाल लेके चल दें तू सब भी हो इस गीत तरीके नारी।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा गया नो चल रही इन श्रोताओं कार्यक्रम में इन जे मंचिंद अगले श्रोता सो की कनेक्टेड हैं पूछ दिन कौन बोल दे नमस्ते जी
1: राम राम भाई जी
0: राम राम जी राम राम ठीक ठाक ने जी
1: बढ़िया भाई जी तो है बल्ला
0: बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया कौन बोल दे और कड़ी थो बोल दे जी
1: भाई हम अजय कपूर बोल लूंगा रखकर तू
0: अच्छा जी अजय कपूर जी क्या हाल चाल ने रखड़ा रहे
1: हाँ जी
0: क्या हाल चाल ने मेलो रखड़ा रहे
1: बढ़िया बढ़िया भाई जी सब बढ़िया
0: और कितनी चल रही कुछ
1: आज गर्मी है ज्यादा बाकी ठीक है
0: हाँ गर्मी तो काफी ज्यादा 26 डिग्री था ऊपर या टेम्परेचर
1: जी जी जी इस टाइम में आज भी अभी मतलब पानी बजने वाले हैं तो मौसम अभी काफी गर्म है
0: जी जी जी काफी ज्यादा और किनी चल रही थी कि अभी जिला परिषद की तैयारी
1: बढ़िया भाई सब अपना अपना लाओ और दे जोर
0: अच्छा
1: जी
0: और प्रधान उप प्रधान पूरे तैयार हैं तुंदे
1: हाँ जी अपना अपना लाओ दे सब जोर अपना अपने में लगे बरकरी अपना अपना
0: बिल्कुल अच्छा क्या लगता तुसो क्या सोच रखने तो है और क्या लगता तुसो कि मतलब जो अक प्रतिनिधि आ सो अगर जनता चुने करी लेकर इंदे आ ता अक प्रतिनिधि तो आम जनता क्या चाहंदे आ आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं छुंदे जी माफ करा जी तुंदी आवाज अजी जी बिल्कुल भी क्लियर ना होने कर दी असु तुंदी आवाज क्लियर ना होने कर दी थोड़ा करे क्लियर नहीं बल्ला हेलो माफ करा जी अजी जी तुसु असु डिस्कनेक्ट करना पियो इंदे अगले श्रोता हेलो मेरे कॉलेज कर दिए अजय जी तुंदी आवाज न क्लियर इच हुंदी थी
1: हेलो भाई जी अभी छोड़ दे आ
0: हां जी अभी छुंदी जी
1: जी
0: क्या विजन मंदन तो है क्या विजन बुने चिंदा के प्रधान उप प्रधान रा अकाम जनता भी नजरिया थों है यरनता
1: बाकी मेरी समझ सभी कर लेते हैं कौन से कि जेड़ा प्रधान आसो मतलब कसी पार्टी और कसी मतलब जाति वाती तो वेद ना रखे करी जनता से प्यार भावना के और अक मतलब अच्छे नागरिक कहीं और जी चुनाव भी वेले वन जिसको अपनी अच्छाई रख लसो हमेशा ही अच्छा व्यवहार कर अपने पंचायतों की जोड़ी करी चल सदावान और आम जनता भी कह रहे हमेशा और हर पहले जेड़े जरूरतमंद इंसान है फिर जरूरतमंद सुख दुख मंज हमेशा साथ खड़ा रहे और हमेशा युवा और जो भी इनकी प्राथमिकता इन जायता वास्ते जितने भी सरकारी योजनाएं इनकी इन्हें जो लेने वास्ते हमेशा संघर्ष करते रहे
0: चलिए बहुत अच्छी गल है जी कुंडल गीत होना पसंद कर लाए जी जी तो है
1: मजी गीत होना एक दिन मिट्टी मिट्टी मिल जाना बंदिया तू गुमान ना कर
0: अच्छा चलिए ठीक है जी ये गीत तो सो जरूर होने लगे है
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी
0: धन्यवाद जी श्रोतो कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप गया ने सो चल रही ने समय बिल्कुल लाइव तुंदे सभी वे वीडियो सेट मा और कार्यक्रम जो आगे बढ़ने तक अगले श्रोता भी असोगे कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
2: नमस्ते जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
2: करण भाई
0: बहुत बढ़िया जी तो कौन बोल रहे हैं और कड़ी तो बोल रहे हैं
2: हां बोलो दी कंडी हूं
0: स्वीटी जी तो ना बोल रहे
2: हां जी
0: ठीक ने स्वीटी जी तो है
2: हां जी ठीक तो वल्ला पंछाड़ी लो तो है
0: हां जी बिल्कुल
2: हां जी
0: और कर लग रहे हैं
2: कुछ ना बस तुम प्रोग्राम ही लग रहे हो ना
0: अच्छा चलिए स्वीटी जी तो है पंचायत अच्छा तो है ता कंडी था उन ता
2: तो है हां जी वो चीरे बोटेन दे ना
0: ये बुछुरा नगर निगम रा इलाका तुंदा
2: हां जी
0: चलिए तो क्या उम्मीद कर देन कजो की जनता जनार्दन है और जनता ही फैसला लियो रहा कि कस जितना का सहारना है ना, बाकी
2: हाँ
0: ता
2: जी
0: जोरम जोरी अपने अपने बंदे, लेकिन जनता जनार्दन है और जनता पर बड़ा कुछ निर्भर के सो कर दा। क्या उम्मीद कर देन तो है अपने प्रतिनिधि थों, क्या कुछ खास किया सो तुम दी कंडी माँ भूना चिंदा, अगर कोई भी प्रतिनिधि चुने करिंदा चाहे सो आजाद आ चाहे सो बीजेपी रहा चाहे सो कांग्रेस रहा।
2: हाँ जी, अब तो सबसे पहले सफाई का ये सबसे ज्यादा आजकल पे यही है कि जगह जगह मतलब कूड़ेदान पर सफाई सुन दे, बंदा कूड़ा फेंक ही गंदे मतलब, तो सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। हाँ
0: जी
2: जी हाँ जी
0: तो 5 साल तक सिर्फ कूड़ा थोड़ा चुकवाना कुछ और भी तो करना।
2: बंदा भी बात तो बोल नहीं सकता कि हाँ कि भाई अगर जितनी क्या ज्यादा चल बोली सकते हैं कि भाई ये चीजें होना चाहिए, मतलब बिचन रही ना तो काम चलो जित ले प्रतिभा दस ले फिर
0: अच्छा
2: हाँ
0: तो क्या चांस लग,
2: जी जो
0: क्या सोच देन तो है कौन जीता
2: जितनी का लगा तो थी पूरा मोटा
0: सो
2: है
0: अपना अच्छा जनता भी बड़ी चलाक है क्या
2: जी बढ़ने पैदा
0: तो ना ना ये बिल्कुल ठीक गल बल्ले तो है, और ये तो है गल मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म में बल्ले की जैसे लक्ष्य होता है इस समय होनो कर देन था ये दिमाग हो रियो ब्याह होना जिन्या बेचारी इंदी जो गृहिणी इन जो घर रहन दिन तिन्या भी दिमाग का होना की ये भी बलना चिंदा
2: जी
0: हाँ जो जितनी को सोई अपना
2: जी बिल्कुल काम करने वाला होगी बस और क्या है
0: सही गल है सही गल है। इंसान रहा
2: जी
0: व्यवहार इंसान रहा नेचर की सोई तेरी असली ताकत है जी,
2: जी
0: और कम करने वाला बुना चिंता जी की तो है बल्लो कम करने वाला व्यक्ति बुना चिंता। तो स्वीटी जी आज कौन दिन की थोड़ा पसंद कर ले तो है
2: आज मैं अपनी फ्रेंड ना डॉक्टर नहीं डॉक्टर प्रियंका ना
0: क्या बात है तुम्हारी फ्रेंड डॉक्टर प्रियंका कड़ी पोस्टेड इन सो।
2: अजी एक हॉस्पिटल से धर्मशाला जो ना हॉस्पिटल में नहीं ना ड्यूटी जा रही।
0: अच्छा
2: हाँ जी तो हूँ कभी प्रोग्राम सब जी ना मेरे ना आए ना तेरा तेरी सुंदर गाना होना मजे
0: क्या बात है डॉक्टर साहब जो भी मक्खन लाई था तो है कि कभी भी आओ इच्छुता स्पेशल ट्रीटमेंट बुना चिंदे है
2: नहीं नहीं
0: स्वीटी जी तो है बाकी मैं ना था स्वीटी ने तो है दिमाग तो भी बड़ा प्यारे इन और बड़े तेज चतुर चंचल चलाक इन
2: चलाक
0: ना चलाक असली मायने में असली उती अंदर चलाक इन तो है कि कस तरीके होगी कि सो एक गुण के ना सो अक्सर या था कस की एंकर में बुने चिंदे जो स्टेज होस्ट करता हा या जी आहे
2: जी
0: ने तिन्या में बुने चिंदे ने है ना ये जो राजनीति
2: जी
0: में तिन्या में बुने चिंदे ने एक गुण तो मैं पूरे पूरे नाम तो बोल लो अगली बारी तो आजाद खड़े गचा वोट तो सू पाएगा ना कमाला
2: जी मिट्टी रखने जी वजह पर कभी इलेक्शन मत कभी खड़ना होला तो वे जी बोले जी बंदे री छोड़ दे मिट्टी
0: अच्छा क्या बात है क्या बात है सोच तो है आगू रे रख रही। और अक्सर सोई व्यक्ति सक्सेसफुल बंदा जो सोच किया विजन किया सो अपना क्लियर रखा सोच किया सो अपने इस प्रकार रे रखा कि मु नेक्स्ट 5 साल बाद या नेक्स्ट 3 साल बाद या 2 साल बाद मु अपने आप जो किया सुखड़ी हेरना और क्या करना ए विजन बुना चिंता इंसान रो। वेरी नाइस स्वीटी जी। तदस्य जी डॉक्टर प्रियंका जी कौन दिन गीत होना पसंद कर ले
2: प्यार सुनना हूँ बंगलू गाना ना सुशांत ठाकुर का
0: बनाना कसेरा
2: बंगलू बंगलू
0: जी
2: सुशांत ठाकुर
0: सुशांत ठाकुर तो नहीं ग्रामवासी गुरु है गीत सुशांत ठाकुर जी के अंतिम आई थिंक लिख रहा हाँ तिन्हें लिख रहा है ये गीत।
2: अच्छा अच्छा
0: हाँ जी
2: हाँ जी
0: यारा प्रियंका जी रा बंगलो बनी कछूरा बंगलो कि ना बन रहा ले।
2: अंजीन दी कॉलोनियन तो यार तेरे
0: अच्छा ते गद्दी कम्युनिटी थो ना
2: नहीं नहीं
0: अच्छा गद्दी समझ देन
2: हाँ जी मतलब बल्ले हमीरपुर देन
0: अच्छा हमीरपुर रेन
2: हाँ पर एडिया ड्यूटी है ठीक है ना तो एट्टी कर मायली लोग कॉलोनी कंडी अंदर ही ना।
0: अच्छा
2: हाँ
0: तो भी बहुत अच्छी गल है जहने असु बहुत खुशी बंदे जहने इंदे कल्चर जो मनो के ने सो पसंद कर दे हिन और होना चाहन दे ना है ना।
2: हाँ जी
0: ठीक है जी तुंदे दोस्त ही वही प्रियंका जी डॉक्टर प्रियंका
2: हाँ जी हाँ
0: यारी
2: जी
0: पसंद में है भी गीत अच्छा बंगलो बनाई तो लियो रे तिन्या ताई ये गीत होना तिन्या बिना चलिए जी, बहुत नाइस।
2: जरूर बनाई तो हूं करते बड़े नहीं
0: ना ना, अगर ना होना हो तो कमाल है, तुंदे पत्ते ने कटे गाने तुंदे पत्ते ने कटी नहीं दे है, कमाल बिखर ने है। ठीक है
2: ठीक है ठीक है ठीक है भाई जी,
0: ना ओके जी, धन्यवाद
2: धन्यवाद।
0: श्रोता एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसे भी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा के इनसो होनु कर दें ता। चलिए श्रोता इंदे बहुत सारे ये जो श्रोता है इंदे परिवार हा, ये जो रेडियो आ ये एक माध्यम आइंदा और यह सब इस परिवार सो के कहना सो बन रहे ना, इस परिवार सो के कहना सो जुड़ रहे हैं है ना, और ये परिवार ये हंसदा रहे, ये खिल खिलंदा रहे और ये हागों के सोबर धरे एक कामना हूँ सचिन कपूर करनो हाँ। चलिए तो धीरे धीरे फरमाइश और दौर के सो पूरा कर दे चल दे, सो तो बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो गे गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे,
3: क्योंकि उस मालिक ने इस धरती पर

हाँ हकीकत अगर दस सुना शो तो ये जो गायक है पम्मी ठाकुर ना, ये वाकई में जिंदगी ने ना रियलिटी होगी कि असो असु सभी परिचित करवाई दिन देना इन सभी वह परिचय किया सु करवाई दिन देन। और ये रियलिटी है ना यार, असु सच में किया सु मिट्टी में था मिलना आखिरकार था। मान का सगल्ला रहा, घमंड का सगल्ला रहा, एटीट्यूड का सगल्ला रहा, कहा गल्ला रहा अहंकार, कहा गल्ला रहा शो तो कसी भी गल्ला रहा ना बुने चिंदा अहंकार ना एटीट्यूड का, जो कि एक दिन वाकई में ना सु मिट्टी में था मिलना है। और मिट्टी में मिलकर ही था फिर आसु खत्म तो बुना है ना था मान न करना चिंता शोता हूँ। बहरहाल आ तो सब बन रहे सचिन कपूर सो गए, और चलिए चल देन कुड़मीटर या कोर फरमाइश थी जरूर शांति आवाज़ में गीत होने ले। लेकिन डॉक्टर प्रियंका जी आई थिंक इंतज़ार करूँ कर दे बुने का, जो कि तैयारी बहुत ही अच्छी और प्यारी दोस्त स्वीटी जी है तीनों गीत के सो डेडिकेट करो आ हमीरपुर रही स्थानीय निवासी हैं और बहुत ही खूबसूरत है इंदा ग्रां दाड़नू ग्रां थो दाड़नू कलोनी मतलब या कंडी कलोनी है ना आपकी गल तड़ीन के असो घर पूरा हो। और वाकई में डॉक्टर प्रियंका जी एडियरी खूबी हा कि इडियरे मनो भी बहुत अच्छे हैं धर्मशाला रहे हिमाचल।

0: शुद्ध बल्दे सपने नखिया सो सच गल बंदे। और इस गीता मंच में आज गीत के सो वाकई में बड़ा जो पिक्चराइजेशन है जो वीडियो अंदर दसो कर दिन कि सपना हेरो तो कि बंगलो के आ सो पुआना हा बंगलू में रहो कर दिन और बंगलू में कि आ सो केक कट्टू कर दिन एंड ऑल दीज थिंग्स कहने सो करो कर दिन। लेकिन जहने हकर खुल दिया तहने ये हिरदन क्या है ता अंगन अंदर बिखरे और पति देव के ना सो समोसे लेकर आए हैं है ना। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट किया सो है वीडियो में दस रहा है ता जो साधारण आऊँ समझ सकूँ जो मेरी समझ आसो ये बल दे कि सपने हेरना की ऐसा बुरी गाल नहीं उच्चे सपने हेरना जरूर है न चिंदा इन शोधों। और हम हमेशा बल लो कि कभी भी किसी भी इंसान जो कि ऐसो कम ना आंकना चिंता मतलब ही ना सोचना चिंता कि ये तो कुछ भी नहीं आऊँ से रह गोए और सो कुछ ना वक्त और हालात कहने सेरे बदलेगा कुछ पता नहीं है शोधों। फिलहाल तो हालात और वक्त इन दबी खरे रह हाँ वह दुआ करना लेकिन मौसम का मिजाज की है सेरे खरे ना रहने वाले भाई साहब ये वालू करता कि फिर मैं बरना हाँ और तुसो दसिनो 22 तरीक हो गए सो पूरे प्रदेश में मौसम अक मौके फिर खराब रहने का अनुमान है। 19 थो लेकर 23 तरीका तक के सो मौसम खराब रहना है कुछ एक एरिया मंच क्या पता ततीमा धर्मशाला इंक्लूड बंदा कि ना। लेकिन ये दस रही है कि उच्चे पर्वत मतलब पहाड़ी वाले इलाके के खराब रहना। बहरहाल इन द लास्ट श्रोता जो है कनेक्ट कर दे। नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी नमस्ते।
1: ठीक हो आप?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है बल्ले तो है ठीक ना?
1: हाँ जी।
0: कौन बल्लू देन और कड़ी तो बल्लू देन
1: साक्षी बोलो जी।
0: हाँ जी
1: साक्षी।
0: अच्छा साक्षी साक्षी जी कड़ी हो बल्लू देन
1: खना।
0: अच्छा साक्षी जी फटाफट अपनी फरमाइश दस दिया को जो कि समय रा अभाव असूल है।
1: और
0: घरे तो मैं इत्थू हेलो हाँ जी कौन दे हूं ना जी
1: माता दा सुनाई नहीं
0: माता दा
1: हाँ जी।
0: चलिए ठीक है जी जरूर धन्यवाद
1: ठीक है बाय
0: बाय। आइए श्रोताओं पहले कुण मिकारी कनारी चली बंदे ने है कुण मिकारी फरमाइश थे है ना। कुण मनु रे कुण मनुआ ते कुण मणियों किया सो मिलाए लेंदे पहले ना फिर तत्तों बाद माता रानी रा नाम भी जरूर लेंदे शो

चलिए शो तो अभी मुंजो यानी कि सचिन कपूर शो दीजिए इजाजत गंदे गंदे किया लास्ट फरमाइश की सो पूरी कर देन शो तो और ये बोलना चाहूँ माता पिता की सेवा कर दे रहा बुजुर्ग और आशीर्वाद बुजुर्ग और आशीर्वाद के सो सोगी हमेशा रखा और हंस दे रहा मुस्कुरा दे रहा खुश रहा तंदुरुस्त रहा। नमस्ते धर्मशाला।

तो क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701-8170-1811-170-91। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार ना पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रिया है सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में।

0: बुक
1: और मुझे दो दिन में वापस चाहिए।
2: दो दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
1: श्योर
2: श्योर सर।
3: हेलो बेबी चाय।
4: थैंक यू।
3: आपने आज की न्यूज सुनी?
4: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
3: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
5: ओह नो।
4: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है?
3: पता,
4: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता।
3: और क्या।
6: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ श्रोताओं अब आपके लिए आपका बेहद खास कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले बताते हैं आपको इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 21 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 48%। जी हाँ श्रोताओं, तापमान जो है वो बढ़ रहा है और 17 से 18 डिग्री तक का जो तापमान होता है वो सामान्यतः प्लेजेंट सा माना जाता है, लेकिन जब 20, 21 और इस तरह से धीरे धीरे तापमान बढ़ता है तो गर्मी का एहसास हमें भी होता ही है और जैसे कि नमी की भी थोड़ी सी कमी है। तो चलिए, वातावरण में नमी की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अपने शरीर की नमी को हम बरकरार रखेंगे। खूब सारा पानी पिए श्रोताओं, प्यास अगर नहीं लगी है तब भी पानी पिए, और पानी पीने से कई बार हमें बोरियत होने लगती है तो नींबू पानी पिए। वाटरमेलन आजकल मार्केट में खूब अच्छे अच्छे आ रहे हैं तरोताज़ा, आप तरबूज का जूस पिए। आपको लगे कि अलग अलग आपने जो है वो ड्रिंक दिन भर में जो है वो टेस्ट भी किए हैं और पिए हैं, तो इससे हमारे शरीर की जो पानी की कमी है वो पूरी होती रहेगी और हम तरोताज़ा और फ्रेश रहेंगे। और श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें भी करेंगे और आपके साथ गीत संगीत का भी मजा लेंगे। फिलहाल कार्यक्रम का आगाज करते हैं अपने फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। श्रोताओं, अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ रेडियो गुंजन पर एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। सफलता आपके मूड की मोहताज नहीं होती, ये आपके अनुशासन की दीवानी है। आज का विचार एक बार फिर से दोहरा रहे हैं श्रोताओं, सफलता आपके मूड की मोहताज नहीं होती, ये आपके अनुशासन की दीवानी है। जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी में हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने के लिए जो भी हम डिसाइड करते हैं कि हम ये मेहनत करेंगे, इस काम पे हम जो है खूब मेहनत करेंगे और सफल होंगे, उस काम को करने से पहले कई बार हमें लगता है कि छोड़ो आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे, और कल फिर आता है तो हम फिर कहते हैं कि आज फिर से मूड नहीं है। इस तरह से हमारा जो मूड है वो हमारे अनुशासन के ऊपर जो है भारी पड़ता है, और अनुशासनहीनता के चलते हम अपनी जो सफलता है उसे हासिल नहीं कर पाते। इसलिए ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो ये बात हमें त्याग देनी है कि आज किसी काम को करने का मूड नहीं है। जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए अनुशासन होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, छोटे छोटे स्टेप्स रोज लीजिए, ताकि आप एक दिन अनुशासन में आना सीख जाएं, और अनुशासन आते ही आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो कामयाबी के पथ पर ज़रूर चलेंगे। श्रोताओं इस वक्त आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत बाजीगर फिल्म से।

श्रोताओ, बाजीगर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। आज है 18 मई 2026 का दिन और आज के दिन विश्व भर में विश्व संग्रहालय दिवस जो है वो मनाया जाता है। 18 मई 2026 को विश्व भर के संग्रहालय एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं। ये विषय सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों को पाटने, संवाद समझ के लिए जो है ये मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संस्कृति, कला और इतिहास के संरक्षण के प्रति जागरूक करना और समाज के विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना है। श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में कार्यक्रम में हम और भी बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे साजन फिल्म का गीत।

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे थोड़ी बहुत सुस्ती जो है वो भी बढ़ रही है, और सुस्ती को हम अपना नहीं सकते, सुस्ती को हमें हटाना है। इसीलिए मैंने कार्यक्रम के आरंभ में भी कहा कि अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें, समय समय पर पानी पीते रहें, और पानी के साथ साथ अगर आपको थोड़ा फेर बदल करना है, अपने टेस्ट को इन्हांस करने के लिए आप नींबू पानी पी सकते हैं, जीरा डाल करके जो पानी बनता है वो पी सकते हैं। और इसके साथ हाल ही में श्रोताओं, मुझे कुछ समय पहले ही एक बात पता चली कि लू जब लगती है हिमाचल में तो लोगों को कम लू लगती है क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा गर्मी सहन नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाहरी राज्यों में जहाँ पे बहुत अधिक कड़ाके की जो है वो गर्मी पड़ती है, वहाँ पे अक्सर लोगों को लू लगती है, और ये बहुत अधिक गर्मी की वजह से होती है। इससे जो है बेहोशी जैसी हालत हो जाती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आना, सिर घूमना, और ऐसा इतना ज़्यादा ना हो हमारे साथ, लेकिन जब हम धूप में निकलते हैं, कई बार हमें निकलना ही पड़ता है, तो हल्की फुल्की सिरदर्द जो है वो हमें भी महसूस होती ही है। तो इसके लिए एक घरेलू नुस्खा है जो कि इमली, जिसे कि हमने आजकल कम कर दिया है खान पान में, इमली को भिगो करके इमली की जो शिकंजी होती है उसमें गुड़ मिला करके और पुदीने की पत्तियाँ मिला लें या फिर पुदीने का रस मिला लें, और दिन में 2-3 बार अगर इसे हम पिए तो इससे हमारा जो है वो लू जो हमें लगी होती है उससे हमें राहत मिलती है और हम तरोताज़ा और फ्रेश जो है वो फील करते हैं। तो ऐसी लू लगने जैसी स्थिति ना आए श्रोताओं, हमें नॉर्मली दिन में 1-2 बार इस तरह का तरल पेय पदार्थ अपने लिए भी और अपने घर वालों के साथ मिलजुल करके ज़रूर पीना चाहिए गर्मियों के दिनों में, और ये बहुत अच्छा रहता है स्वाद की दृष्टि से भी और अपने आप को तरोताज़ा और फ्रेश रखने की दृष्टि से भी। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब श्रोताओं, चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर, और गीत आगे जो हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं वो है इश्किया फिल्म से। गीत के बोल हैं, दिल तो बच्चा है। जी जी हाँ श्रोताओं, दिल जो है वो बच्चा ही होता है, और बच्चा हमारा जो अंदर का हमारा बचपन और बच्चा होता है उसे हमें ज़िंदा रखना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि जब भी कभी हमने अपने आप को बहुत अधिक गंभीर या मैच्योर प्रदर्शित करने की कोशिश की है तो हम ज़िंदगी की उन छोटी छोटी खुशियों से, हंसी मजाक से जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए और ज़िंदगी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पलों का आनंद उठाइए, और इस गीत का भी आनंद उठाइए 91.2 MHz से।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का, आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओ, अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। 91.2 MHz पर आप हैं श्रोताओ इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं श्रोताओ अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस के बारे में। इस दिवस की शुरुआत की बात करें श्रोताओं, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य संग्रहालयों को सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों को समृद्ध बनाना और लोगों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने वाले माध्यम के रूप में उजागर करना है। इस विशेष दिन पर दुनिया भर के संग्रहालयों में कई प्रकार के कार्यक्रम, सेमिनार और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। आम जनता को संग्रहालय की कार्यप्रणाली और उनके सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत करवाया जाता है। कई देशों और राज्यों जैसे भारत में, राजस्थान में इस दिन संग्रहालय में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग इतिहास से जुड़ सकें। और श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर हम अगर धर्मशाला अपने छोटे से प्यारे से शहर की बात करें तो हमारे धर्मशाला में भी बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा संग्रहालय है। और अगर धर्मशाला के वासी होने के नाते आप लोग अभी तक नहीं गए हैं तो धर्मशाला में हम अगर घर गृहस्थी में भी व्यस्त हैं फिर भी हफ्ते या महीने में एक ना एक चक्कर हमारा जरूर लगता है धर्मशाला, चाहे मार्केट जाना हो या घूमना फिरना हो। तो किसी दिन समय निकाल करके धर्मशाला का जो हमारा म्यूज़ियम है, जो संग्रहालय है, उसमें आप ज़रूर जाइए। बहुत अच्छा फील होता है और इतिहास से जुड़ी हुई वो जो चीज़ें हैं, वो जो संग्रहालय में रखी गई वस्तुएं हैं, उनको देख करके हम भी अतीत में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। जब मैं वहां गई थी तो मैं उन राजाओं के वस्त्रों को देखकर, आभूषणों को देखकर मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उसी दौर में चली गई हूँ। खैर, अपना अपना महसूस करने का तरीका होता है। आप लोग भी ज़रूर जाइए श्रोताओ और इन्जॉय कीजिए धर्मशाला के इस प्यारे से शहर में बसे, इस जो बसाया गया है, बनाया गया है म्यूज़ियम, उसकी खूबसूरती को और इतिहास से जुड़िए। 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में बातें और भी होंगी, जानकारियां भी साझा करेंगे श्रोताओं, लेकिन गीत संगीत को हम नहीं भुला सकते। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज के दिन की। आज है 18 मई और आज के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और ये दुनिया भर में मनाया जाता है श्रोताओं, हमारे देश में भी मनाया जाता है। और बात करें धर्मशाला की तो धर्मशाला में भी ये मनाया गया है। और भाषा और संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया धर्मशाला में, जिसमें हमारे धर्मशाला के जो जाने मानी हस्तियां हैं उन्होंने शिरकत की। और इसमें बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनका भी स्वागत किया गया। साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे जो लोकगीत हैं और लोक नृत्य हैं उनका प्रदर्शन किया गया। तो धर्मशाला में भी आज के इस दिन को बहुत ही प्यारे और अच्छे ढंग से जो है वो मनाया गया। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आइए चलते हैं और आनंद उठाते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का। और जो गीत कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे श्रोताओं, वो है बॉर्डर फिल्म से। और ये गीत उन गीतों में से एक है जिसकी मिठास कभी कम नहीं होती। जब भी सुने ये गीत अच्छा ही लगता है। गाँव की मिट्टी की खुशबू और गाँव का जो खेत खलिहान है उसका बहुत ही प्यारा सा वर्णन इस गीत में किया गया है। और बड़े ही प्यारे से लिरिक्स हैं इस गीत के, धुन भी बड़ी अच्छी है। एंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गीत को और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ।

श्रोतो, आज है 18 मई और आज देश दुनिया में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और जैसा कि हमने आपसे बात की कि संग्रहालय में रखी हुई वस्तुएं हमें इतिहास से जोड़ती हैं और हमें बताती हैं कि हमारी जो जड़ें हैं वो कहाँ थी और किस तरह से हम आगे ज़िंदगी में बढ़े। और धर्मशाला के संग्रहालय की बात करें तो धर्मशाला का जो हमारा संग्रहालय है वो भी बेहद खूबसूरत है। वहाँ पर रखी गई जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनका एक बार ज़िंदगी में हमें ज़रूर जो है वो नज़ारा लेना चाहिए, एक बार लुत्फ़ ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि धर्मशाला में ही रह करके अगर हम इतने करीब से संग्रहालय को नहीं देखेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ी वो कहते हैं ना, विश्वास ना करने वाली बात सी हो जाएगी। इसलिए जब भी समय मिले आपको, ज़रूर समय निकाल करके आप संग्रहालय का ज़रूर एक बार दौरा करें। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जाँच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वासनगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: तो क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम में एक बार फिर से। और श्रोताओं, समाचारों के बाद और इस अंतराल के बाद आप चलते हैं मनोरंजन की ओर, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। गीत है श्रोताओं ताल फिल्म से, इश्क बिना क्या जीना। बहुत ही प्यारा सा गीत, एंजॉय कीजिए अपने रेडियो सेट्स पर और बने रहिए यूं ही हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब रुख करते हैं जानकारियों की ओर भी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहां तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। तकनीकी शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित करना है। राज्य सरकार ने युवाओं के विचारों और उनके हुनर को मंच प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सूक्ष्म लघु उद्यमों और स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। विभिन्न तकनीकी संस्थानों की प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग विभाग के 120 विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त बाजार की मांग के अनुरूप AI और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे माध्यमों से प्रशिक्षुओं की सॉफ्ट स्किल्स को निखारा जा रहा है ताकि वे भविष्य के अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकें। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में ADB और अन्य संस्थाओं द्वारा कई परियोजनाएं जारी की जा रही हैं। बागवानी, प्राकृतिक खेती और डेयरी तकनीक जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की बढ़ती मांग को देखते हुए तकनीकी संस्थानों में इन विषयों का समावेश किया जा रहा है। विद्यार्थियों के ज्ञान संवर्धन के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि महाविद्यालयों के साथ समन्वय भी स्थापित किया जाएगा। श्रोतो, ये थी जानकारी। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब चलते हैं मनोरंजन की ओर। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे आनंद उठाते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में बात करते हैं आज के दिन की। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। इसके साथ साथ श्रोताओं, एक और ख़ास दिन है जो आज के दिन मनाया जाता है, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। जी हाँ श्रोताओं, जिसे HIV टीकाकरण जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हर साल 18 मई को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन HIV एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए एक निवारक टीके की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और HIV अनुसंधान के लिए समर्पित हजारों वैज्ञानिकों, स्वयंसेवकों और स्वास्थ्य पेशेवरों को सम्मानित करता है। इस दिन की शुरुआत 18 मई 1997 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में दिए गए दीक्षांत भाषण से हुई। उन्होंने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को एक प्रभावी निवारक एड्स वैक्सीन विकसित करने की चुनौती दी, ये कहते हुए कि एड्स के खतरे को अंततः समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस का पहला आयोजन 18 मई 1998 को हुआ था। श्रोताओं, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस आज हम मना रहे हैं और इसके बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी बातचीत करेंगे। फिर से चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। और श्रोताओं, कार्यक्रम में फिर से एक बार समय हुआ है छोटे से अंतराल का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAAC A+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस, एआई एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण, GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point Authorized Admission Center, नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, अंतराल के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में अब चलते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और ये गीत है श्रोताओं गदर 2 फिल्म से।

1491.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। गीत है रिफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज मनाया जा रहा है विश्व भर में, और साथ ही साथ HIV/AIDS वैक्सीन दिवस जो है वो भी आज के दिन मनाया जाता है। तो इन दोनों दिवसों में हम अपनी भागीदारी किस तरह से निभा सकते हैं, जैसे कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो मनाया गया, और हम अपनी भागीदारी इसी तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं कि जहाँ पे भी इतिहास से जुड़ी हुई इस तरह की चीज़ें हम कह सकते हैं या संग्रहालय हैं, वहाँ जाएं और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाएं। और साथ ही साथ वैक्सीन, अगर आपको लगता है कि HIV के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो उन्हें ज़रूर आप एक अच्छा नागरिक होने के नाते जानकारी दें और HIV वैक्सीन के बारे में भी जानकारी दें। श्रोताओं, आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत सलामे इश्क फिल्म से, और इस गीत के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे के साथ मना रहे हैं जश्न। कांग्रेस ने 47 में से 32 और भाजपा ने 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल करने का किया दावा। केंद्र सरकार ने कहा देश भर में पेट्रोल डीजल व एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी। देश भर से अनेक कलाकार ले रहे हैं भाग और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे सैब सोसाइटी के 800 कर्मचारियों की हड़ताल से राजधानी शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कुल 47 नगर निकायों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत राज्य सरकार की कार्यशैली का आधार है और समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में दावा किया कि भाजपा ने 47 में से 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि 25 नगर परिषदों में से 18 और 22 नगर पंचायतों में से 12 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से भरोसा उठ चुका है।
1: 25 नगर परिषद में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते और 22 नगर पंचायत में से 12 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते। पार्टी के सिंबल पर भले ही ये चुनाव नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश इस बात को लेकर के, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसको मालूम पड़ जाता है कि किस पार्टी से संबंध रखता है। पिछले कल रात से बहुत ज्यादा परेशानी में सरकार है। प्रभाव का इस्तेमाल करने की अगर वो कोशिश करेंगे उसमें भी वो एक्सपोज होंगे।
0: शहरी निकायों के चुनाव परिणामों के बाद भाजपा व कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि शहरी निकायों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने 47 में से 31 नगर परिषद व नगर पंचायतों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है।
2: नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। ऐसे बहुत सारे जिला है जहां कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। चंबा जिला के तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। जिला कांगड़ा के अंदर भी 6 नगर परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें 6 की 6 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 31 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरमैन बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तिरुवनंतपुरम में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वीडी सतीशन को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में केरलम विकास, सामाजिक न्याय व सुशासन की नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल को कौशल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आज शिमला में विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु उद्यम और स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। राजेश धर्माणी ने बताया कि विद्यार्थियों के ज्ञान संवर्धन के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों व कृषि महाविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार देश में पेट्रोल डीजल व एलपीजी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठा रही है और सभी राज्यों में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में बताया कि पिछले लगभग अढ़ाई महीने से पश्चिमी एशिया संकट जारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इसके कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के दामों में वृद्धि हुई है।
3: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल डीजल एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और YouTube चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, शिक्षा और इतिहास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस मौके पर धर्मशाला स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कांगड़ा की एसडीएम शिल्पी बेगटा ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान देश भर से आए कई जाने माने कलाकारों ने लगभग 50 कलाकृतियां प्रदर्शित की हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को हर कलाकार की रचनात्मकता व कला देखने को मिल रही है।
4: मेरा नाम मनप्रीत है, मैं लुधियाना से आई हूँ। टोटल आई थिंक मोर देन 45 पेंटिंग्स हैं सबकी मिला के, और सबका अलग अलग काम है, अलग अलग कहते ना, हर किसी का अपना अलग हाथ होता है, अपना अलग अलग क्रिएटिविटी या अलग अलग काम है, और सबने बहुत मन से काम किया, बहुत एफर्ट दिए हैं अपना यहाँ पे लाके लगाने के लिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए और सभी को बिना थके लगातार काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदायों और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: राजधानी शिमला में सहब सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। इस हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। सहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सहब सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष अमित भाटिया ने कहा कि सोसाइटी के लगभग 800 कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
5: हमारे कर्मचारी जो अपने हक अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं, और ये एस्मा चलो डीसी साहब ने लगा दिया, मगर डीसी साहब को हमने भी कई बार मांग पत्र दिया, डीसी साहब ने आज तक 4 साल में कोई भी वार्तालाप हमारे निगम प्रशासन से नहीं करवाई। साफ साफ कर्मचारियों के विरुद्ध में पूरा प्रशासन बैठा है। अभी तो हमारी कोई बात प्रशासन से हमारे को कोई कॉल नहीं आई है। अभी जब तक कॉल नहीं आती है तब तक हमारी स्ट्राइक है जो कंटिन्यू ही जाएगी।
0: केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू के संबंध में आज एक व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, भीषण गर्मी के समय धूप में निकलने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और मौसमी फलों तथा इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों के सेवन पर बल दिया गया है। लोगों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के खतरे के लक्षणों जैसे चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, मानसिक स्थिति में बदलाव, उच्च तापमान, निर्जलीकरण, दौरे और बेहोशी के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से मुलाकात की। इस दौरान नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पारंपरिक चिकित्सा, एआई आधारित जन स्वास्थ्य नवाचारों और टीबी उन्मूलन की दिशा में निरंतर प्रयासों जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे के साथ मना रहे हैं जश्न। कांग्रेस ने 47 में से 32 और भाजपा ने 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल करने का किया दावा। केंद्र सरकार ने कहा देश भर में पेट्रोल डीजल व LPG की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी। देश भर से अनेक कलाकार ले रहे हैं भाग और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे सेहत सोसाइटी के 800 कर्मचारियों की हड़ताल से राजधानी शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है का सुनहरा अवसर। 540 प्लस टॉप कंपनियां और 1250 प्लस से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर, नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो उनका स्वागत करें और दिल खोल कर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तो उसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: चलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो। अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है? अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है, और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया।
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े, इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो पोषण।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के पांच आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। आप विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसके।
12: कहाँ, तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज़ सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: और कैसे रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के पांच आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, उनका स्वागत करें और दिल खोल कर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर।
14: चलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है? अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।